नमस्कार। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

0: अब से कुछ देर बाद यानी सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात आप दिन के 1 बजे सुन सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। रामचरितमानस गान का समय रहेगा सुबह 9:10 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह के 9:20 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंद का समय रहेगा सुबह 9:40 पर। गाने पुराने जमाने के आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। और गाने नए तराने नए आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे दिन के 11 बजे से 1 बजे तक और तत्पश्चात 1:05 से शाम के 5 बजे तक। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 5 बजे और पणिहारी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:30 बजे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम के 6:30 पर। राजस्थान में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:45 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार आप सुन सकेंगे शाम के 6 बजे। और फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम के 6:05 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम मार्टिकेश्वर का समय रहेगा शाम के 6:20 पर। एनसीईआरटी के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम के 7:30 पर। हेलो गोरबंद का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर सुन सकेंगे आप। और नागौर में आयोजित जश्न ईद ए मिलाद नबी का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। श्रोताओं ये तो थी कार्यक्रम विवरण की जानकारी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार
1: पर भी लाइव सुन सकते हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार का निवेश के लिए आधारभूत ढांचे की मजबूती पर विशेष जोर। नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए सभी जिलों में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन। ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार आज 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेशकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल

0: राजस्थान फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि उद्योग और निवेश के लिए सुविधाओं के विस्तार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से बदलते राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का आह्वान किया। साथ ही श्री शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स की बैठकें समय समय पर आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रवासी राजस्थानियों के सुझावों और अनुभवों का लाभ राज्य को मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए भी चिन्हित किया है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में आयोजित करने के उद्देश्य से सभी जिलों में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के आदेशानुसार गठित प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ओर से लगभग 13,076 PRO तथा PO प्रथम जैसे मतदान कार्मिकों को आज और कल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सवाईमाधोपुर, भरतपुर और जैसलमेर में भी प्रशासन द्वारा गठित टीमें अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रही हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में मतदान प्रक्रिया और EVM संचालन की जानकारी देने के साथ ही प्रतिभागियों को मशीनों का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए स्वीप गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अगली पीढ़ी के सुधार और गवर्नेंस में बदलाव समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावी नीति क्रियान्वयन का आधार है। श्रीनिवास ने यह बात कल इटली में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। रोम स्थित सैपियंजा यूनिवर्सिटी में हो रहे 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सम्मेलन की थीम पब्लिक गवर्नेंस फॉर द कॉमन गुड, ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्विंग द ग्लोबल कम्युनिटी रखी गई थी। इस मौके पर श्रीनिवास ने राजस्थान में किए जा रहे अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को वैश्विक मंच पर रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित राजस्थान 2047 विजन में नागरिक केंद्रित शासन, समग्र विकास और आधारभूत संरचना की मजबूती को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने राजस्थान संपर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन शिकायतों के निस्तारण, राजकाज एनालिटिक्स के जरिए विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा तथा मिशन राजीविका का माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने राज उन्नति के माध्यम से प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रभावी समीक्षा को भी रेखांकित किया। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन को 12 वफात भी कहा जाता है। ये पर्व अमन, शांति, भाईचारे और मानवता का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश भर में घरों, मस्जिदों, बाजारों और प्रतिष्ठानों को सजाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज दोपहर 4 दरवाजा स्थित मौलाना जियाउद्दीन चौराहे से मुख्य जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट और रामगढ़ मोड़ होते हुए करबला पहुंचेगा। बाड़मेर, पाली और भीलवाड़ा सहित सभी जिलों में इस मौके पर खास जुलूस निकाले जाएंगे। अजमेर से हमारी संवाददाता ने बताया कि यहाँ जश्न का माहौल बना हुआ है और ख्वाजा साहब की दरगाह को विशेष रूप से सजाया गया है।
1: इस अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पहुंचकर अकीकत के फूल और चादर पेश कर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली भाईचारे की दुआ कर रहे हैं। ईद मिलान उद नबी के मौके पर दरगाह परिसर में कल रात से ही नात

0: मिलाद की महफिलों का आयोजन किया जा रहा है। जायरीन पैगंबर हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की शिक्षाओं को याद करते हुए प्रेम, शांति, मानवता और आपसी सद्भाव का संदेश दे रहे। नलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने यातायात सहित शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा और 15 सितंबर को गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कल जयपुर में मोती डूंगरी के परिसर में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि 15 सितंबर को शोभा यात्रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होकर मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा और ब्रह्मपुरी होते हुए श्री गढ़ गणेश जी मंदिर पहुंचकर विसर्जित होगी। एक रिपोर्ट।
2: गणेश चतुर्थी के पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब को देखते हुए बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस को भीड़ प्रबंधन, पुलिस तैनाती, यातायात डायवर्जन तथा पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग को संभावित आपदा से निपटने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती तथा पर्व से पहले मंदिरों का फायर ऑडिट कराने, देवस्थान विभाग को मंदिरों में सजावट और रोशनी की व्यवस्था तथा विद्युत निरीक्षक को विद्युत उपकरणों तथा केबलिंग की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए गए। इधर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मोती डूंगरी में 7 से 15 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे, जिसके तहत 7 सितंबर को कलश यात्रा, जलाभिषेक, 8 सितंबर को पुष्प नक्षत्र, पंचामृत अभिषेक, विशेष केले की झांकी, ध्रुपद गायन, 9 सितंबर को मोदक की झांकी, 10 सितंबर को श्री भगवान के फलों की झांकी, 11 सितंबर को भगवान की सब्जियों की झांकी, 12 सितंबर को भगवान श्री के फूलों की झांकी, 13 सितंबर को मेहंदी पूजन एवं सिंजारा तथा 14 सितंबर को मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग संध्या और शयन आरती के आयोजन होंगे। 15 सितंबर को ही शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित करीब 18 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश बूंदी के तालेड़ा में 70 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कल से 2 सितंबर तक पूर्वी क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि कोटा संभाग के कुछ भागों में 27-28 अगस्त को हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार का निवेश के लिए आधारभूत ढांचे की मजबूती पर विशेष जोर। नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए सभी जिलों में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन। ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार आज 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए सुनिए भक्ति रचना रामचरितमानस गान।

मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी, हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

रामचरितमानस गान। अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह भक्ति संगीत की पहली प्रस्तुति पंडित केदार के स्वर में।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़। आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम।

गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youtheexperessnagaur@gmail.com पर, और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंध।

अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और रामलाल निर्मल के स्वर में ये लोकगीत कार्यक्रम गौरबंद में। लीजिए सुनिए सीमा मिश्रा के स्वर में ये अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंद। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के।

ये है फिल्म संगीत की पहली पेशकश, शैलेंद्र सिंह के स्वर में फिल्म जमाने को दिखाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
4: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी में।
2: पहले तुम।
4: आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म चलते चलते में। अमित खन्ना के बोलों को संगीत से सराबोर किया है बप्पी लहरी ने।

लीजिए सुनिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म जुली का ये नगमा। शब्द रचना

0: आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

प्लीज़ सुनिए लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह के युगल स्वरों में फिल्म वारिस का नगमा। वर्मा मलिक के बोलों को संगीत से सराबोर किया है उत्तम जगदीश ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत में। लीजिए सुनिए अब इस कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म संगीत से। शब्द रचना संतोष आनंद की है, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इसे गाया है जॉली मुखर्जी और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने ज़माने के फिल्म संगीत में। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए।

सभी श्रोताओं को ईद मिलादुन्नबी यानी बारह वफात की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि जीवन में हमेशा उत्सव बनाए रखिए, कुछ इस तरह से

एक बार फिर से आकाशवाणी नागौर चिरमी चैनल की तरफ से सभी श्रोता मित्रों को ईद मिलादुन्नबी यानी बारावफात की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं बारावफात की, तो इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इस्लाम धर्म में इस दिन को बहुत ही पवित्र और अद्वितीय माना जाता है।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की अगली पेशकश में AR रहमान, जावेद अली और श्रेया घोषाल के मिले जुले सरों में फिल्म रॉकी स्टार का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हाँ तो श्रोता, हम बात कर रहे थे आज के दिवस की, यानी आज है ईद ए मिलाने दुबी यानी 12 वफात, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस, जो कि बड़े ही धूमधाम से केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। उनकी

शिक्षाएं, उनकी आदर्श नीतियाँ, उनके आदर्शवादिता, दया, न्याय और समानता ये जीवन में उतारें तो हम सबके लिए बेहतर होगा और हमारे जीवन के लिए तो सुंदर है ही ये बातें। लीजिए सुनिए अरिजीत को फिल्म आज़ाद में।

हाँ श्रोता, हम बात कर रहे थे आज के दिन की, दिवस की, यानी 12 वफ़ात की, जो कि मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है और उनकी शिक्षाओं को मनाने का उत्सव है। श्रोताओं, जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले खुद को आईने में देखना और कहना, क्या इसका हल है मेरे पास, इस समस्या का सोल्यूशन है? यदि ऐसा होगा तो आत्मविश्वास जरूर जगेगा। जीवन को कठिनाई नहीं, पहाड़ नहीं, एक उत्सव की तरह मनाए, कुछ इस तरह से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ। आवाजें हैं कादिर गुलाम मुस्तफा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा और साथियों की। इस गीत को लिखा है शौकत अली ने, धुन है ए आर रहमान की, फिल्म का नाम है फिजा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाध फरमाएं एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्नाडे, एसडी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये।

शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समाप्त कीजिए गुलुकार तलत अजीज की आवाज में। मौसकी तरतीब दी है फिदा हुसैन ने, एल्बम का नाम है ये मिलन ख्वाब सा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक।

हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

अब सुना जाए अगला गीत सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: राष्ट्रीय सेवा विविद भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं।

देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत है आनंद बख्शी का, गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत। आवाजें हैं मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

0: श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे हिंदी समाचारों के बाद FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेशकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के 8 चैप्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले 1 वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। ईद मिलादुन नबी का पर्व आज प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अमन, शांति, भाईचारे और मानवता का ये पर्व पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिन की खुशी में मनाया जाता है। इस मौके पर राजधानी जयपुर सहित सभी स्थानों पर घरों, मस्जिदों, बाजारों और प्रतिष्ठानों को सजाया गया है। राजधानी जयपुर में 4 दरवाजा स्थित मौलाना जियाउद्दीन चौराहे से मुख्य जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट और रामगढ़ मोड़ होते हुए करबला पहुंचेगा। जैसलमेर और भरतपुर में जगह जगह जुलूस ए मोहम्मदी निकाले गए। इस दौरान जुलूस का फूलमालाओं और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जालौर में जुलूस के साथ साथ मिलाद का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में भी ईद मिलाद और जुलूस के साथ साथ जरूरतमंदों को दान पुण्य कर सवाब कमाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: देशवासियों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व हमारे आसपास एकता और खुशियां बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब की दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। आज ओणम का पर्व पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह 10 दिनों तक चलने वाला पारंपरिक फसल उत्सव है। ओणम समृद्धि, खुशहाली, समानता और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना करते हुए कहा है कि जनता में खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को मजबूत करते हुए ये पर्व सभी के जीवन में जोश और उत्साह से भरपूर हो। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

आखिरी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गांव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी

0: तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नजदीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल जरा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं, हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सारी जिंदगी का साथ है। हर इंजन के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
1: भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानवी और रवि, शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। क्या बात है, बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं। हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक की पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने जाते हैं। पीली साड़ी मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है। और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूं, वहां गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में मां नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहां कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूं तो वहां गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहां गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहां नर्मदा नदी क्योंकि

कि हम एमपी वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता, चंपा कली देखो, नदिया किनारे है राई, आए कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी, सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है, तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था उसमें भी तलत महमूद की आवाज थी, अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं लागी नहीं छूटे रामा, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गांव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती है। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप

कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में है जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत जरूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम मां समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल, और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

0: ओ बसंती पवन पागल फिल्म जिस
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाए। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।
1: नदी नारे

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुनकर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वहीं घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं, और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं। लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो जरा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात जरूर बताइए। मुकेश की आवाज।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान है। और जरा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पावना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहली बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहां ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी। और ये हमारा सवाल था गंगा मैया, ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है, शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी। मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था, तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेंद्र की चली है, इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है। अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताइए, इसी महीने में है। अब आगे बढ़े और आपको सुनवाए ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम, फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया। और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया, 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद की किस्मत, अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं, दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देव बर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।

इस घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी समेटे रहता है। हर कोना किसी स्मृति का संरक्षक बन जाता है।

शायद यही कारण है कि घर से दूर जाने पर उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहां जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहां रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियां वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: India today stands as the fastest.
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक

0: आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सब

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा,
4: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
5: हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले।
4: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
4: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
4: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
5: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
4: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
5: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
4: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हम साया।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।

0: के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बता दिया, आपके पिता का नाम क्या है बता दिया, आपके पति का नाम क्या है बता दिया, आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है, जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में पूछ कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, ये अक्सर सवाल होता
1: हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
0: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
1: पुरुष जवाब दे।
0: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
1: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
0: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
1: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
0: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खासतौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: और शब्द हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल जाती
0: है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
1: विकराल रूप ले ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इस

0: में हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं,
1: जी
0: क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं कि
0: दूसरों के
1: उनके
0: बारे में।
1: उनके क्या विचार हैं या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं, जैसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन सी, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं, और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी वो
0: और
1: मिठाई
0: हो सकता है इसी रक्षाबंधन पर, जो 28 तारीख को है,
1: जी
0: तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद ए मिलाद,
1: जी
0: तो ईद ए मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है, और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी, और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। और
1: और आज
0: आज
1: एक और खास दिन है, आज ओणम है, और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, जो हर त्योहार पर की जाती है, और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है।
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है
1: और
0: ओणम
1: ये
0: को।
1: पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है
1: बहुत
0: ना।
1: स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा।
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी
0: वो
1: खासियत
0: खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है।
1: और भरना भी नहीं चाहिए
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है, और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भला किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं
1: हाँ
0: कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे
1: यानी
0: जो
1: ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल
0: केरल
1: की
0: की बात करें, तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
1: जीआई टेक के रूप में।
0: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है,
1: यानी
0: और
1: उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है, और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था, और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
1: और है ना
0: हैं।
1: वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो जो महिलाएं दिखती है,

0: इतनी सुंदर लगती है, और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और उसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
1: क्या बात है, वो
0: माहौल।
1: आभा अलग ही होती है और एक गरिमा मान व्यक्त तो लगता है देखकर।
0: जी
1: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए।

0: आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
1: जवाब दीजिए।
0: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें,
1: ये
0: इसके
1: सही
0: अलावा
1: बात
0: और
1: है।
0: कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
1: हमारे हाथ
0: जाएंगे।
1: जल जाएंगे।
0: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
1: जी
0: टिप्पणी,
1: जी जी
0: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर आग बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
1: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि
1: कितनी
0: अरे देखो
1: अच्छी
0: कितनी
1: दोस्ती।
0: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है ये। किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
1: उसकी कोई
0: लोग
1: परिभाषा ही नहीं है।
0: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
0: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: ये गुण हमारे पास भी होता, लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा।
6: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है
5: और हमारा नहीं लेती। ये एक सहज ईर्ष्या होती है, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है।

0: आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या
1: जी
0: लिखा है।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या। भाई ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, ये हमारी सखी है, कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ो अगर उसे आंगन में, क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, इसी बहाने साफ सफाई हो जाती
1: सफाई
0: है।
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है, क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गई। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही हो गई।
1: घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और कई
1: व्यंजन भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है, और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है, ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है, अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम
1: उनके
0: खुद
1: नाम से पहचाने
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें
1: जी।
0: अपना सम्मान खुद मिले, चाहे

0: उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है, तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
0: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
1: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के, हाँ, पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
0: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है, तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं,
1: जी
0: है ना? तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: पीछे
0: अपने
1: हटने
0: पीछे
1: लगते
0: हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
1: जो
0: चली आ
1: चल रहा
0: रही
1: है
0: है।
1: वो अच्छा है।
0: जी
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीसकर छान ले। चाशनी तैयार कर एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, ने एक तार बनाना है उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाए, गैस की आंच धीमी करें, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाए, इसे लगातार चलाते रहे ताकि गांठे ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे, उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाएं।
0: क्या बात है, तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक, हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है, तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
1: आप सुनवा दे,
0: सुनवाते
2: नहीं,
0: हैं।
2: नहीं

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं जी। मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहां कहां शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी, मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो, या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो, चारों तरफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल, वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया, और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल,
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहाँ पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था, ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहाँ पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं, और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहाँ पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
2: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
2: फिर नेपाल है। फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
2: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना, तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। तो पापा का वहां तबादला हुआ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहां पर इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते, छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे, तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन

0: वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जोय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, इस बारे में कुछ बताएं।
0: तो उस समय बात है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का। कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही है, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या कि मैं, वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में, बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, तो रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे। तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा है एनुअल डे में। हाँ, मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो, पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना, बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया गया था। तब मैं क्लास 8th में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मैं बॉम्बे
1: ले जाना चाहता है।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया, दिल्ली में, अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करना।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर

0: अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो
1: जी
0: वो नाटक है, बाकी सब प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहां पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना है, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें, वो मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं जिंदगी

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो?
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया

0: कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
0: हाँ, मेरा शहर
1: जी,
0: जी, मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है, हमको इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना,
0: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क, और सब कैसे संभलें,
0: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
1: जी,
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल,
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: तो मैं सबसे अलग,
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ, आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एस डी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है,
1: इसमें सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े
1: हाँ
0: हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं,
1: जी
0: थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिमी देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं। ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
0: जी
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
0: जी
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में

0: कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं। वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहां पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा,
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: अच्छा।
0: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं। बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा,
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उसमें बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारित्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है, तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी, अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं, वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली, तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि यह आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है,

0: जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की, तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही,
0: चर्चित रही कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक
1: जी जी
0: इससे जो

0: उड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था
0: जी
1: जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन फुल पुलिस सी व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा, कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था हल्का हिसाब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मेरे नाटकों के बारे में। मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, नाटक है वराचिड़ी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बातें भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा,
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
0: अच्छा,
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं। और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट ने फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
0: जी।
1: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया। उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है, नॉवेला 1084 की मां के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने तुम उनका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनैलिटी। मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया। अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ। उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है। वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो मां का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी मां।
0: उसकी
1: तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
0: फिर
1: हैं
0: से
1: कि
0: जिया आपने उसे, उस माहौल को।
1: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई। महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
0: और
1: थे,
0: जया भादुड़ी जी और अनुपम खेर के साथ।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है पोली हाउस से खेती के लाभ। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहिताश भजिया। आप कृषि विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर से हैं। आप भी अपनी खेतीबाड़ी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
1: ऐसा ही
0: उस
1: लगा
0: चीज को
1: मुझे,
0: दिल से चाहो तो.
1: ऐसा ही
0: और
1: लगा।
0: भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है
1: जी
0: आपका.
1: जी जी
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके
1: जी
0: बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे, तो
1: जी
0: कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर
1: जी
0: कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा
1: मैं थिएटर से टीवी में, मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, औहदा भी होगा
0: बिल्कुल.
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा। और
0: अच्छा.
1: एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था, मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी.
1: मैं मुंबई में जाकर स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: बस एक
1: मैं
0: कलाकार, एक
1: बस
0: आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था, मैं जो

0: रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। अच्छा। आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर थे।
1: आ रही थी, हाँ बिल्कुल।
0: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर था।
1: बिल्कुल।
0: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था। अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी
1: रोमांटिक
0: उसमें जाएंगे
1: जी।
0: या आप कहीं नहीं, मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री की कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
1: जी।
0: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं। तो मैंने भी नहीं किया
1: इस तरह के रोल में
0: बिलोंग। जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे।
1: हाँ।
0: आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया भजा चौरसी की मां के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता।
1: हाँ।
0: ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
1: जी।
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ, और यहां कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहां हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे। तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था। वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं

0: जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सैटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सैटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की
0: तो
1: जगह है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
0: बिल्कुल
1: वो
0: नहीं,
1: यहाँ पर
0: ओटीटी में
1: अभी।
0: एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को अगर तीन सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो
1: बिल्कुल।
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले ही वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में,
1: जी
0: मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है,
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया। उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
1: बिल्कुल
0: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
1: जी
0: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है,
1: जी
0: जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
1: जी
0: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल। यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
0: जी, मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं।
1: हाँ
0: बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मंजिल
0: गाना
1: फिल्म
0: है,
1: से,
0: वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ,
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि
1: जी
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, पसंद किए गए हैं,
1: जी जी
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था।
0: जी
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग। हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
0: जी
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की की, 2012, 18, बी मूवी करके की। और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था।
0: जी
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना। तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी।
0: बिल्कुल, तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग
1: जी
0: इंडस्ट्री,
1: जी
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे बहुत, ठीक
0: अच्छा
1: है, तो वो भी अभी करने को मौका मिल गया है।
0: जी
1: वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताए जाते हैं,
0: हाँ हाँ
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए
1: जी
0: बहुत अच्छे लगे,
1: जी
0: और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके
1: जी
0: लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं,
1: थैंक यू।
0: और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध
1: आपका
0: भारती
1: भी
0: के
1: बहुत बहुत
0: स्टूडियो में
1: शुक्रिया।
0: आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

सपने अगर बड़े हैं तो हौसले भी बड़े रखिए, रास्ते मुश्किल हों तो कदम और तेज रखिए, कल की चिंता छोड़िए, आज को खास बनाइए, अपनी मेहनत से अपनी एक नई पहचान बनाइए। इन्हीं सपनों, उम्मीदों और जोश से भरी बातें लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं नेहा नारायण सोनी, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट, लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बातें होती है युवाओं की सोच की, उनके सपनों की, करियर की, सफलता की और उन छोटी छोटी बातों की जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, आज की खास बात करेंगे ईद मिलाद उन नबी के बारे में। तो दोस्तों, ईद का त्यौहार खुशियों, भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश देता है। रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाई जाने वाली ईद पर लोग सुबह नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान और विशेष रूप से सेवइयां बनाई जाती है। बच्चे नए

कपड़े पहनकर त्योहार का आनंद लेते हैं। ईद हमें सिखाती है कि खुशियाँ तभी बढ़ती है जब उन्हें दूसरों के साथ बांटा जाए। जरूरतमंद लोगों की मदद करना और उनके साथ खुशियाँ बांटना इस त्योहार की खूबसूरत भावना है। ईद समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करती है। दोस्तों, आगे की बात हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के समय में खेती तेजी से आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य खेती को अधिक आसान, सटीक और प्रभावी बनाना है। नई तकनीकों की मदद से किसान फसल की बेहतर निगरानी कर सकते हैं और संसाधनों का सही उपयोग भी कर सकते हैं। खेती में ड्रोन तकनीक का उपयोग खेतों की निगरानी, फसल की स्थिति देखने और जरूरत के अनुसार छिड़काव के लिए किया जा रहा है। सॉइल सेंसर्स मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों से जुड़ी जानकारी देते हैं। इससे सिंचाई और खाद के इस्तेमाल

को बेहतर तरीके से तय करने में भी मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग की मदद से फसल में बीमारी, कीटों के प्रकोप या पानी की कमी जैसी समस्याओं की शुरुआती पहचान की जा सकती है। वहीं सैटेलाइट और जीपीएस टेक्नोलॉजी खेतों की निगरानी और फसल की स्थिति का विश्लेषण करने में उपयोगी है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है पॉली हाउस से खेती के लाभ। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी से संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 240-168। नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।
2: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के समय में खेती तेजी से आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य खेती को अधिक आसान, सटीक और प्रभावी बनाना है। खेती में ड्रोन तकनीक, सॉयल सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग की मदद से फसल में बीमारी, कीटों के प्रकोप या पानी की कमी जैसी समस्याओं की शुरुआत की पहचान की जा सकती है। वहीं सैटेलाइट और GPS टेक्नोलॉजी खेतों की निगरानी और फसल की स्थिति का विश्लेषण करने में उपयोगी है। इसके साथ ही स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स जरूरत के अनुसार पानी देते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। कृषि रोबोट और आधुनिक मशीनें बुवाई, निराई और कटाई जैसे कामों को अधिक कुशल बनाने में मदद कर रही है। इस तरह एग्रीटेक खेती को स्मार्ट, डेटा आधारित और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। दोस्तों, अब बातें करते हैं करियर की, तो आज के डिजिटल दौर में कंटेंट राइटिंग युवाओं के लिए एक अच्छा करियर विकल्प बनकर उभर रहा है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है किसी विषय, उत्पाद और सेवा के बारे में ऐसी जानकारी लिखना जो पढ़ने वाले के लिए उपयोगी और आसान हो। आज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मीडिया के लिए लगातार नए कंटेंट की जरूरत होती है। एक अच्छे कंटेंट राइटर के लिए सबसे जरूरी है अच्छी भाषा, सही जानकारी और रचनात्मक सोच। इसके साथ रिसर्च करना, विषय को समझाना और उसे सरल शब्दों में प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंटेंट राइटर्स के लिए अवसर मौजूद है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स। काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब?
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के डिजिटल दौर में कंटेंट राइटिंग युवाओं के लिए एक अच्छा करियर विकल्प बनकर उभर रहा है। एक अच्छे कंटेंट राइटर के लिए सबसे जरूरी है अच्छी भाषा, सही जानकारी और रचनात्मक सोच। इस क्षेत्र में शुरुआत ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से की जा सकती है। अनुभव बढ़ाने के साथ SEO कंटेंट, कॉपी राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग जैसे क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस करियर की खास बात यह है कि इसमें अपनी राइटिंग स्किल्स को लगातार बेहतर करके फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब या किसी कंपनी में नौकरी के अवसर तलाशे जा सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, नई चीजें सीखना पसंद है और आपको अपनी बात प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक उपयोगी करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, यहां लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पणिहारी।

हरी कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सगली बहना भाया ने सगला ने घना घना राम राम। बहना देखो बारह वफात रह तुम्हार री थाने सब ने घनी घनी शुभकामना। आज है बारह वफात है नी, ओ दिन मुख्य रूपों इस्लाम धर्म रा अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब रे जन्म री खुशी और बानी याद में मनाया जावे। और ई दिन ही बानो जन्म होयो और ई दिन ही बानो निधन भी होयो। इस वास्ते देखो दोनों घटनाओं री याद के रूप में आज के दिन ने जानियो जावे। हजरत मोहम्मद साहब रा उपदेश और कुरान रे संदेशों पूरी मानवता ने मार्गदर्शन मिलियो। इस वास्ते देखो आज रे दिन याद में मुस्लिम भाई बहन मस्जिद और घराना सजावे, गरीबा ने दान देवे, बे पैगंबर साहब री भलाई दया और शांति री

शिक्षा ने याद करे और मैंने बताया रास्ता पे चालने रो संकल्प लेवे तो बना क्यों नहीं आज रे खुशी रे मौका पर आप आपने सगला भाई बहना ने बारह वफात रे त्योहार पर उप्यारो सो गीत सुनावा है नी तो लाओ सुनाओ गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: बेना देखो, अब दो दिन बाद ही अपने भाई और बहना रे अटूट रिश्ता रो प्रतीक राखी रो त्वार आ रही है नी। राखी रो त्वार बेना देखो हो भी अड़ो भाई रे अटूट असीम निस्वार्थ प्रेम रो प्रतीक जो को बहन आप रे भाइयों करे और भाई माए री बहनों करे है नी। बहन देखो भाया रे प्रेम रे प्रतीक ये त्वार ने अपनो पूरो देश में ही बड़ी धूमधाम मनाया जावे। आपरे भाई री सुनी गलाई पर अपनी बहना जो को रक्षा सूत्र बांधन मेरे खुशहाली और सुखी संपन्न निरोगी जीवन री ईश्वरों कामना करे और कहे कि भाई देखो मारा वीरा ना हर कामयाबी सफलता मिले और दुख कष्ट परेशानियां भी रुको सो दूर रहे और इरे विपरीत भाई आपरे बहन रे खुशहाल जीवन और मेरी हर विकट परिस्थिति में मेरी सहायता और परेशानियों मेरी रक्षा करने रो वचन आपरी बहन ने देवे और उतवार बेना देखो अपने देश में कोई आज काल रो ही नहीं होवन सैकड़ों सदियाँ चली आ रही है। जब देखो रानी करमवती हुमायूं ने राखी भेजी तो सहन साबी देखो मेरी विकट परिस्थिति में आपरे भाई होवन रो फर्ज निभावता हुआ आपरी फौज लेवन आन बिना दुश्मन री सेना ने खदेड़े मेरी रक्षा करी और आ ही बात देखो अपनी महाभारत काल में भी जब द्रौपदी भी कृष्ण भगवान ने अपनी ओढ़नी बानी उंगली कट जाने पर बना बांधी नहीं तो कृष्ण भगवान भी कहीं करियो कि बिना बना सखा रे रूप में मानो चाहे बने भाई रे रूप में मानो बने चीर हंड्रे टाइम बानी साड़ी ने बढ़ान बानी लाज बचाई। ये तेरे को मैंने देखो आपा देखा कि भाई बहन री कच्ची डोर रो रिश्तो घणो ही मजबूत हो जो को कीरे भी तोड़े नहीं टूटे और इरे साथ साथ बेना देखो अपने कार्यक्रम ने जरे अपनी बहना रो और मानो

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है पॉली हाउस से खेती के लाभ। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज के विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 240-168, और नागौर का स्टडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।
3: तो बने देखो जिया कि आप सगला जाना कि परसों राखी रो त्योहार आ रही है नी, और ई टाइम में देखो आप कई तरह का पारंपरिक पकवान भी बना वाला। मैंने देखो आज रो समय है आधुनिकता रो है नी, और अपने खान पान में भी देखो तेजियों बदलाव आयो है। ऐडा समय में अपना टाबरिया भी व्यंजन में घनी तरह की भिन्नता ने पसंद करे। विभिन्न तरीकाओं बिना अगर आप तरीकाओं बनावा तो बे भी घना ही पसंद करके चौखी तरीकाओं बिन जी में है नी, और अगर आप देखो थोड़ी सी कोशिश करा तो आप अपने पारंपरिक व्यंजना ने ही नयो रूप और स्वाद देवन आधुनिक बना सका। हाँ वो किया जिया कि बिना देखो राखी पर बनाई जावन वाली सेवैयाँ ने आप दूध में उबाल कर मेरी खीर बना लेवा तो अपने टाबरिया ना घर रहा दूजा लोगा ने भी आ घनी पसंद आई है नी, और स्वाद लेवन में भी ना चोखे तरह जी में। और यहाँ ही देखो सेवियाँ ने तरह तरह की हरी सब्जियाँ डालन, नमकीन चावल जान भी बनावा तो सगला ही छटकारा लेवन जी में है नी। तो हो गयो नी अपनी पुरानी स्वीट डिश में नयो अवतार, और आगे बना देखो तीज चौथरा और घनी तरह रहा अपनी बहना रहा त्यौहार आ रहा है, और अन्न में देखो अपनी बहना नया नया गावा बेस पहन आपरो 16 श्रृंगार करे, और अन 16 श्रृंगार में अपनी बहना देखो हाथा में मेहंदी नहीं लगावे तो वो तो हो ही नहीं सके है नी। और जब आ मेहंदी सुर्ख लाल नहीं रचे और आता में तो अपनी बहना रा चेहरा उदास हो जावे, तो बहना देखो थाना घणो निराश होने की जरूरत को नहीं, क्योंकि देखो आप अपनी बहना ने ऐड़ा नुस्खा बतावा जीरुबाना हाथारी मेहंदी लाल रंग देखता ही पानी। जी आगे देखो मेहंदी ने आप कही कपड़ाऊँ छान कर थोड़ी नीलगिरी तेल की बूंदा डाला, और थोड़ो सो नींबू रस और थोड़ी चीनी का दाना डाला। बीरू गई है कि मेहंदी घनी रच है, और अपनी बैनारी हाथारी लाल सुर्ख मेहंदी देखो बाना देखता ही प्यारी लगे। अब आजकल मैंने देखो आप वो भी देखा कि थे देखो कि वह कही है कि मेहंदी रा कौन बनियोड़ा आवे, पर मैंने देखो आजकल आप आलस करता हुआ वह मेहंदी रा कौन रेडीमेड जगह बाजार में मिले वह सीधा खरीद के लिया वहाँ और बेल लगा ला, तो मैंने देखो ऐडो कभी भी नहीं करना, क्योंकि वहाँ ने मेहंदी का कोना में कहीं है केमिकल मिलियोड़ो है, और वह मेहंदी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही अपने हाथों बिल्कुल उतर जावे, और फिर आपनों भी मुंडो फीका पड़ जावे कि अल्लाह अब आर तो 2 दिन पहला मेहंदी लगाई और इतनी जल्दी अपनी मेहंदी को रंग ही उतर गयो। तो बीरी बजाय बहना देखो मैं ज्यान था ना अबार बताई कि घर में ही कपट छान कर मेहंदी में थोड़ो सो नीलगिरी को तेल चीनी है नी और नींबू को रस डालकर आप अभी ने कह रहा तो आपने मेहंदी भी बहुत दिना तक रची उड़े रही, और आपने हाथा की जिकी बा एक रौनक हुई नी बा अलग ही जो कलर आई वो देखता ही बनी है नी। तो बेना क्यों नहीं अब राखी रो भी त्यौहार आ रही है तो ई खुशी का मौका पे आप सुना था बेना ने प्यारो सो गीत, तो लाओ सुनाओ गीत।

अभी आप सुन रहे थे पणिहारी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस

0: स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है, साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फकीरा का, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना रविंद्र जैन की और संगीत भी रविंद्र जैन ने ही दिया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: फिल्म संगीत का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से फिल्म संगीत। अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कुदरत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है पॉली हाउस से खेती के लाभ। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज के विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 240-168, और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं धनराज सोनी जोधपुरी।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आप सुन रहे हैं माटी के स्वर का कार्यक्रम और हमारे आज के कलाकार हैं धनराज सोनी जोधपुरी।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है पॉली हाउस से खेती के लाभ। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान केंद्र, उपकेंद्र नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 240-168। नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। इसमें हमारे आज के कलाकार थे धनराज सोनी जोधपुरी। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नवाचार के जरिए मतदान का कर्तव्य याद दिलाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा उनकी सरकार महिला सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध। और प्रदेश भर में ईद मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां जोरों पर। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामजदगी के पर्चे भर सकेंगे। 309 स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इस बीच प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित दोनों प्रमुख दलों ने मंथन तेज कर दिया है। उम्मीदवारों से बायोडेटा मांगने के साथ ही छटनी का काम भी किया जा रहा है। इधर पार्टियों से टिकट के लिए संभावित उम्मीदवार भी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रत्याशी चुनने के लिए स्थानीय विधायक और संगठन का भी पक्ष जानेंगे। आज बीकानेर

0: में मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा का टिकट चाहने वालों से संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है जो उनके कार्य का परिचायक होगा।
1: देखिए आम तौर पे जिस वार्ड का वो रहने वाला होता है उसी वार्ड से टिकट देने की प्रयास में हम लोग रहते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऊपर हमारी एक कमेटी है राज्य स्तरीय, वो अगर कोई निर्णय लेगी तो हम उससे सहमत होंगे। हम मंडल स्तर से भी हमने राय ली, हमने जिला अध्यक्ष से भी राय ली, हमने माननीय विधायक जी से भी राय ली, जो संबंधित एमपी है उनसे भी राय ली, प्रभारी भी संगठन के और चुनाव के उनसे भी राय, तो फिर सबसे राय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: स्थानीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में इन दिनों स्वीप गतिविधियां परवान पर है। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई नवाचार किए जा रहे हैं। जागरूकता रैलियों, प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने का कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। बाड़मेर में रक्षाबंधन के त्योहार को भी मतदाता जागरूकता से जोड़ने का नवाचार किया गया है। वहां राखियों पर मतदाता जागरूकता संदेश लिखे गए हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस बीच त्योहारी सीजन के चलते मिठाई के डिब्बों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्टिकर चिपकाकर आमजन को मतदान के जरिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मतदाता जागरूकता के संदेश वाली राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राज्य में आगामी दिनों 309 नगरीय निकायों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता हैं, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं। इस बीच चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए इन दिनों कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमें अधिकारियों और कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम संचालन की जानकारी देने के साथ ही व्यवहारिक अभ्यास भी करा रही है। भयमुक्त, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव के लिए जिलों में प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव कार्य के लिए 1,15,000 से अधिक कार्मिक नियोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के तहत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन युवाओं को खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण का साझा मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय खेल हस्तियां भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल होगी। राज्य सरकार की आरजीएचएस योजना में दवा वितरण में लापरवाही बरतने पर प्रदेश की 215 निजी फार्मेसियों का लाइसेंस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर बीते महीनों के दौरान ये कार्रवाई की गई। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस में दवा वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। लंबे समय से दवा उपलब्ध नहीं कराने वाले फार्मेसियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आने के कारण इन फार्मेसियों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक 39 फार्मेसी जयपुर से बंद की गई है। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य कर्मचारियों को समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आगे भी अनुपालना कार्रवाई की जाती रहेगी। भारतीय चिकित्सा संघ IMNA इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA के ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक लेने की सलाह नहीं दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_

0: और जयपुर, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज जयपुर में रक्षाबंधन पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर महिला की प्रगति के लिए काम कर रही है।
1: मैं माता बहनों को इसलिए करना चाहता हूँ, ये आधी आबादी है, हमारी माता बहनों को आर्थिक रूप से हम संबल देंगे तो हमारा प्रदेश का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान बनेगा, देश विकसित भारत बने। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए नेतृत्व, और नेतृत्व इसलिए कि माता बहनों के अंदर जो शक्ति होती है, हमारी संस्कृति में माता बहनों का सम्मान है कि नहीं भाई बताइए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम किसकी आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं, और जब शक्ति की जरूरत होती है तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं कि नहीं करते, और जब विवेक और बुद्धि की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं।
0: इधर भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार में महज एक दिन का समय शेष रहते प्रदेश भर में इसे मनाने को लेकर उत्साह का माहौल है। इन दिनों बाजार रंग बिरंगी राखियों की अस्थायी दुकानों से अट गए हैं। राजधानी जयपुर के अंदरूनी बाजारों और बाहरी कॉलोनियों में आज छुट्टी के दिन राखी की खरीदारी परवान पर रही। भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों में उत्साह बना हुआ है। महिलाओं को आवागमन सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। रोडवेज की बसों में राखी पर राज्य सीमा में महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। इधर रेलवे स्टेशनों पर भी त्योहारों पर घर लौटने को लेकर भारी भीड़ बनी हुई है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस आज देश दुनिया में ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा है। इसे 12 वफात भी कहा जाता है। यह दिन अमन, भाईचारा और मानवता का प्रतीक है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिले और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में अकीदत और एहतराम के साथ निकाले जा रहे जुलूसों को लेकर कानून और यातायात व्यवस्था के समुचित इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में चार दीवारी स्थित जियाउद्दीन चौराहे से शुरू हुआ मुख्य जुलूस अंदरूनी इलाकों से होता हुआ करबला पहुंचेगा। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के लिए जगह जगह खाने पीने की स्टॉल सहित छबीलें लगाई गई है। प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में आज कई जगह पर मानसूनी बादल मेहरबान रहे। राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद फिर अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए जयपुर सहित 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं चलने और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश का मौजूदा दौर 28 अगस्त से थमने का पूर्वानुमान है।
2: पूर्वी भारत के ऊपर आज भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य पोजीशन से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 28 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में और कमी होगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना आगामी दिनों में बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नवाचार के जरिए मतदान का कर्तव्य याद दिलाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा उनकी सरकार

80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गौरव गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। समारोह में शहीद वीरांगनाओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 56 व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले 9 से 17 अगस्त तक जिले भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। सेल्फी विद तिरंगा, हस्ताक्षर अभियान तथा सूचना केंद्र में आयोजित विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी सहित सभी आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होने और आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सवाई माधोपुर नगर परिषद के अलावा खंडार और बौंली नगर पालिकाओं में 9 सितंबर को तथा गंगापुर सिटी नगर परिषद सहित वजीरपुर और बामनवास नगर पालिका में 11 सितंबर को मतदान होगा। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले बोर्ड फ्लैक्स हटाने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू करवाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश देने के साथ ही स्वीप गतिविधियां तेज हो गई हैं। शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, आपराधिक मामलों में वांछितों की धरपकड़ और कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों और पदाधिकारियों की बैठकों के दौर जारी हैं। पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारियों को टिकट के लिए आवेदन देने के साथ ही जनसंपर्क कर जमीन तलाशना भी शुरू कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आयोजित प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बीते दिनों जिले को 8 नई बसें आवंटित की गईं। जिला कलेक्टर कानाराम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अक्षत, रोली और पुष्प मालाओं से बसों का विधिवत पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 2 बसों का संचालन सवाई माधोपुर से भरतपुर होते हुए सौरौजी, 2 बसों का सवाई माधोपुर जयपुर एवं जयपुर धौलपुर तथा 1 बस का सवाई माधोपुर से थानागाजी होते हुए नारायणपुर मार्ग पर संचालन किया जाएगा। शेष 3 नई बसें पुरानी तथा खराब बसों के स्थान पर वर्तमान मार्गों पर संचालित की जाएंगी। पिछले दिनों जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन से दौसा रेल लाइन पर चल रहा विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न होने के बाद अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हरियाणा सहित दूर दराज के इलाकों से सीधे संपर्क होने से यात्रियों और व्यापारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत माय भारत केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिले के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस मौके पर सभी स्थानों पर उपस्थित युवाओं, अतिथियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई गई, जिसमें समाज को नशे से मुक्त करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दोहराया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र में 31 दिसंबर तक की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग 1 अगस्त से शुरू हो गई है। नए पोर्टल पर आसान बुकिंग होने से सैलानी सीधे अपनी सफारी बुक कर रहे हैं। इधर राष्ट्रीय उद्यान के जोन नंबर 7 में बीते दिनों बाघिन T127 लक्ष्मी के नए शावकों के साथ देखे जाने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: पहले आज री खास खबर प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव खातिर काले अधिसूचना जारी वेला 31 अगस्त ताई नामांकन दाखिल हो सकेला। मतदाता जागरूकता खातिर स्वीप गतिविधियां रे तहत आज भी कई कार्यक्रम रखा गया। नवाचार रे जरिए मतदान रो कर्तव्य याद दिलायो गयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कयो वाणी सरकार महिला सुरक्षा और विकास सारू प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर माए ईद मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम रे साथ है मनाई जी। रक्षाबंधन ने ले तैयारियां जोरा माथे है। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव खातिर काले अधिसूचना जारी होने रे साथे ही नामांकन दाखिल करने री प्रक्रिया शुरू वेला। उम्मीदवार 31 अगस्त ताई नामजदगी रा पर्चा भर सकेला। 309 स्थानीय निकायां रा चुनाव दो चरणां माए वेला। पहले चरण रो मतदान 9 सितंबर ने वेला वठीने दूजे चरण खातिर 11 सितंबर ने वोट डाल्या जावेला। वोटां री गिनती 14 सितंबर ने करी जावेली। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष रा चुनाव 21 सितंबर ने वेला। इन बीचे उम्मीदवारा रा चयन खातिर भाजपा और कांग्रेस समेत खास दलारो मंथन तेज हो गयो है। उम्मीदवारा सू बायोडेटा मांगने रे साथे ही छंटनी रो काम करियो जा रियो है। अठीने पार्टियां सू टिकट खातिर संभावित उम्मीदवार भी जोर शोर सू दमखम दिखा रिया है। इन बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो के वारी पार्टी उम्मीदवार चुनने खातिर स्थानीय विधायक और संगठन रो भी पक्ष जानेला। आज बीकानेर माए सू बणतल माए श्री मेघवाल कयो कि भाजपा रो टिकट चावण वाला सू संकल्प पानो भरायो जा रियो है जको वाणे काम ने दिखावेला।
1: देखिए आम तौर पे जिस वार्ड का वो रहने वाला होता है उसी वार्ड से टिकट देने की प्रयास में हम लोग रहते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऊपर हमारी एक कमेटी है राज्य स्तरीय वो अगर कोई निर्णय लेगी तो हम उससे सहमत होंगे। हम मंडल स्तर से भी हमने राय ली, हमने जिला अध्यक्ष से भी राय ली, हमने माननीय विधायक जी से भी राय ली, जो संबंधित एमपी है उनसे भी राय ली, प्रभारी भी संगठन के और चुनाव के उनसे भी राय, तो फिर सबसे राय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: स्थानीय निकाय चुनाव माए 100% मतदान खातिर निर्वाचन आयोग रे हुकुम मत है। जिला माए आ दिना स्वीप गतिविधियां परवान मत है। लोगों ने मतदान करने खातिर प्रेरित करने रे लखसू कई नवाचार करया जा रिया है। जागरूकता रैलियां प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगितावां रा माध्यम सू मतदाताओं ने वोट डालने रा कर्तव्य याद दिलाया जा रिया है। बाड़मेर माए रक्षाबंधन त्योहार ने भी मतदाता जागरूकता सू जोड़ने रो नवाचार करियो गयो है। वठीने राखियां माथे मतदाता जागरूकता संदेश लिखा गया है।
2: नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस बीच त्योहारी सीजन के चलते मिठाई के डिब्बों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्टिकर चिपकाकर आमजन को मतदान के जरिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मतदाता जागरूकता के संदेश वाली राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राज्य माए आवता दिना 309 नगरीय निकाया माए 1,44,00,000 सू 32 वोटर आपरे मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला। 10 नगर निगम 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकावां खातिर दो चरणा माए वोट डाल्या जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि जयपुर नगर निगम माए सबसू 32 मतदाता है। वठीने बूंदी रे इंद्रगढ़ माए सबसू कम वोटर है। इन बीच चुनाव कामा माए नियुक्त कार्मिकारो प्रशिक्षण खातिर कार्यशालावां राखी जा रही है। जिला प्रशासन री कानिसू गठित टीमा अहलकारां और कार्मिका ने मतदान प्रक्रिया और ईवीएम संचालन री जानकारी देने रे साथ ही व्यवहारिक अभ्यास भी करा रही है। भय मुक्त पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव खातिर जिला माए प्रशासन कानिसू खासा इंतजाम करया जा रहा है। चुनाव कामा खातिर 1,15,000 सू 32 कार्मिक नियोजित करया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले वीडियो कॉन्फ्रेंस रे माध्यम सू खेलो इंडिया संवाद ने संबोधित करेला। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 जलसे रे तहत मेरा युवा भारत माए भारत कानी सू राखी जो ओ कार्य

0: कार्यक्रम देश भर माए राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा हर जिला रा 2 कॉलेजां माए मोटियारारी भागीदारी रे साथ है राख्यो जावेला। वो खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण ने एक साझा मंच प्रदान करेला। इन कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय खेल हस्तियां युवाओं रो उत्साह बढ़ाने खातिर भेड़ा हुएला। राज्य सरकारी RGHS योजना में दवा वितरण माथे लापरवाही बरतने ने प्रदेश री 215 निजी फार्मेसियों का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दियो गयो है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर रा हुक्म माथे लाडला 2 महीना रे चालता आ कार्रवाई करी जी। चिकित्सा महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के RGHS माए दवा वितरण व्यवस्थारी लगातार निगरानी करी जा रही है। लंबे वक्त सू दवा मुहैया नहीं कराने वाली फार्मेसियां ने स्पष्टीकरण देवन रो मौको दियो गयो हो पर संतोषजनक जवाब नहीं आने रे कारण फार्मेसियां रो लाइसेंस निलंबित कर दियो गयो है। ਉਹਨਾਂ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ 39 ਫਾਰਮੇਸੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਠੌੜ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਗਲੀ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੋ ਫਾਇਦੋ ਦੇਣ ਖਾਤਿਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਤ ਮਾਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਣ ਖਾਤਿਰ ਆਗੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਤੀ ਰਹੇਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਘ IMA ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ H1N1 ਰੇ ਬੜਤਾ मामला ने देखता थका लोगों से सावचेत रहने की अर्ज करी है। IMA रो कहना है कि घणकर संक्रमण हल्का होवे है और आप ही ठीक हो जावे, इन वास्ते घबराने री कोई बात नहीं है। IMA लोगों ने फ्लू रा लक्षण खातिर डॉक्टर री पर्ची रे बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने री सलाह दी है। IMA खास रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमेक्सोलिन, क्लेवुलनेट और सेफिक्लाइसाइम जिसी एंटीबायोटिक्स खुद नहीं लेने री चेतावनी भी दी है। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰਾ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਿਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਵਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੋ ਜੁੜੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤਾ ਥਕਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਖਾਤਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1: मैं माता बहनों की इसलिए करना चाहता हूँ, ये आधी आबादी है। हमारी माता बहनों को आर्थिक रूप से हम संबल देंगे तो हमारा प्रदेश का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान बनेगा, देश विकसित भारत बने। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए नेतृत्व और नेतृत्व इसलिए कि माता बहनों के अंदर जो शक्ति होती है। हमारी संस्कृति में माता बहनों का सम्मान है कि नहीं, भाई बताइए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम किसकी आराधना करते हैं? माँ लक्ष्मी को पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? और जब शक्ति की जरूरत होती है तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब विवेक और बुद्धि की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं?
0: भाई बहन रे प्रेम रो प्रतीक रक्षाबंधन रे त्योहार माए महज एक दिन रो बखत शेष रहो है। प्रदेश भर माए राखी मनाने ने लेर उच्छास रो माहौल है। आ दिना बाजार रंग बिरंगी राखियां री अस्थायी दुकाना सू अटेड़ा है। राजधानी जयपुर रा अंदरूनी बाजारा और बाहरी कॉलोनिया माए आज छुट्टी रे दिन राखी री खरीदारी परवान माथे री। महिलावां रे आवन जावन री सुविधा खातिर राजस्थान रोडवेज कानीसू भी खास इंतजाम करया गया है। रोडवेज री बसा माए राज्य सीमा माए महिलावां ने निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। अठीने रेलवे स्टेशना माथे भी त्योहारा माथे घरे आवण ने लेर भारी भीड़ बनोड़ी है। राखी रे साथे ही कई जगावा माथे रक्षाबंधन जलसा भी राख्या जा रिया है। जयपुर रा सांगानेर विधानसभा खेतर माए आज राख्या गया रक्षाबंधन आयोजन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शिरकत करी। कार्यक्रम माए मोटी तादाद माए महिलावां मौजूद रही जकि मुख्यमंत्री रे राखी बांधरवाणो स्वागत करो। अठीने रेलवे स्टेशना माथे भी त्योहार माथे घरे लौटने ने लेर भारी भीड़ बनोड़ी है। हजरत मोहम्मद साहब रो जन्म दिवस देश दुनिया माए ईद मिलादुन्नबी रो रूप माए मनायो जा रियो है। इन्हें 12 वफात भी कहो जावे है। ओ दिन अमन, भाईचारा और मानवता रो प्रतीक है। इन सिलसिला माए आज पैगंबर मोहम्मद रा जीवन और शिक्षा शिक्षावा माथे मिलाद महफिला और सीरत सम्मेलन राख्या जा रिया है। इन मौके माथे मिलाद जुलूस भी निकाला जा रिया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहरा माए अकीदत और एहतराम रे साथ है निकाला जा रहा कानून और यातायात व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम करया गया है। जयपुर माए 4 दीवारी थापित जियाउद्दीन चौराहे सू सरू व्यो जुलूस अंदरूनी इलाका सू होतो व्यो करबला पहुंचेला। जुलूस माए भेड़ा अकीदत मंदा खातिर जगह जगह खाने पीने री दुकाना समेत छबीली लगाई जी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC NET CSIR NET

0: @icarAIEEAPGAICEPHD 2026 परीक्षारी आखिरी उत्तर कुंजी और नतीजा इन सप्ताह जारी करेला। एजेंसी बतायो है कि नतीजा और अंतिम उत्तर कुंजी वारी वेबसाइट माते उपलब्ध रहेली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केवल अहलकारारी जानकारी माते ही भरोसा करने रो कहो है। और अब मौसम, प्रदेश रा पूर्वी और दक्षिणी भागा माए आज कई जगह माथे मानसूनी बादल मेहरबान रिया। राजधानी जयपुर और आसे पासे रा खेतर माए दोपहरा पाछे चोखी बिरखा हुई। मौसम महकमो आज जयपुर समेत 19 जिला माए बिरखा रो येलो अलर्ट जारी करियो है। मौसम महकमो पूर्वी राजस्थान माए तेज हवामा चालने और कई जगह माथे भारी बिरखारी भी आस जताई है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बारिश रो मौजूदा दौर 28 अगस्त सु थमने रो पूर्वानुमान है।
1: पूर्वी भारत के ऊपर आज भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य पोजीशन से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 28 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में और कमी होगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना आगामी दिनों में बनी रहेगी।
0: और आखिर माए खास समाचार एक फिर सुनो। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव खातिर काले अधिसूचना जारी वेला। 31 अगस्त ताई नामांकन दाखिल हो सकेला। मतदाता जागरूकता खातिर स्वीप गतिविधियां रे तहत आज भी कई कार्यक्रम रखा गया। नवाचार रे जरिए मतदान रो कर्तव्य याद दिलायो गयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो वाणी सरकार महिला सुरक्षा और विकास सारू प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर माए ईद मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम रे साथ है मनाई जी। रक्षाबंधन ने लेर तैयारियां जोरा माथे है। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का जिर्मी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: राम राम सा। खेतीबाड़ी कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मैं आपरो प्रहलाद भाई। आज खेतीबाड़ी री चौपाल माथे आपां न्यूतर बुलाया हाँ डॉक्टर रोहितास जी बाजिया साहब ने। आप सहायक आचार्य है कृषि अनुसंधान उप केंद्र नागौर में, तो करा आपरो स्वागत। राम राम सा डॉक्टर साहब।
1: राम राम साहेब बला जी।
0: डॉक्टर साहब रो स्वागत हुई। और भैया आप निवेदन ओ है कि आज रो जो को फोन इन कार्यक्रम है इर मायने आपरी जकी समस्या हुए, विशेष रूप अगर पोली हाउस संबंधित हुए तो, या दूसरी भी जकी भी आपरे मित्र कीट संबंधित हुए तो, या खेती मायने जकी कर रिया हो कोई रोग कीट प्रकोप जको भी फसलान मायने आपरे हुए, तो फसलाओं संबंधित खेती बाती संबंधित आपरी समस्या जकी है उन रो समाधान इन कार्यक्रम में लाइव पा सको हो। फोन नंबर है 015-82-240-168। फोन नंबर एक कर फेरो सुन ले रहा हो, 015-82-240-168। इन नंबर माथे फोन करो और आपरी समस्या रो समाधान पाओ। तो किसान भैया रा फोन कॉल तो आ ही रापा जवाब भी दे हाँ। बातचीत अगर शुरू करा आपा बाजिया साहब, तो एक मित्र कीट जो को नाम है वो अबे तो जागरूक किसान है बार वास्ते भी नयो कोनी,
1: सही बात है।
0: और जानकार जगह है खेती रा बे भगत भगत माते बतावता रहे, चौपालों भी बतावता रहे। तो मित्र कीट कहीं है पेल पोत, सीधो सो सवाल ही अगर आपा कोई साथ किसान भाई जगह ध्यान में नहीं हुए तो, कीट तो नाम ध्यान में है कि कीड़ा है जगह
1: सही बात
0: फसला
1: है।
0: रा। अब फसला में कीड़ा दो तरह रा है, तो बामू मित्र कीट किसो है दूसरो किसो है?
1: देखो साहब सही बता रहे हो, क्योंकि पहला चीज यहाँ मित्र कीट है जो वो आपने लिए फसलों के लिए बहुत ही जरूरी आकर है, कि चाहे परागण हो जो उत्पादन, अगर अच्छे उत्पादन के लिए अपना खेत में मित्र कीट हो वो बहुत जरूरी आकर है।

0: ई वास्ते आपने आ चीज ध्यान रखनी है कि जगह मित्र कीट है। देखो अपना ये बदलता परिवेश के मायने लगत लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और आप मेन बात तो कहें कि जो लगातार अंधाधुंध जो खाद इको दवाएं वो प्रयोग करते जा रहे हैं, तो ई वास्ते लगातार जो मित्र कीट की संख्या वह घटती भी जा रही
1: घटती
0: है।
1: जाएगी, खत्म हो रही है।
0: क्योंकि जी अपना मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी जी परागण को कार्य क्रिया करे, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो चाहे वो बीटल हो, ये सारी जो चीजें हमारे लिए मित्र कीट है, और ये मित्र कीट को हमारे को संरक्षण करना, इनको बचाना खेत के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हो क्या रहा है कि लगातार अंधाधुंध अपन क्या दवाइयों का प्रयोग करते रहे, जैसे मित्र कीट अब जमीन में हमारे केचुआ है, तो लगातार हम जहर का प्रयोग करते जा रहे हैं, वो जहर का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो उससे लगातार हमारे जो जमीन के केचुए हैं या जमीन के जो भी हमारी जो पॉजिटिव लाभदायक जो चीजें हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे अगर कई बार जैसे मधुमक्खी हो या हो, तो उसमें सुबह जल्दी, क्योंकि खेत के अंदर वो सुबह जल्दी जल्दी आती है, तो हमें उन बातों को भी ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का स्प्रे करें तो सुबह हमारे को जल्दी जो जल्दी जल्दी नहीं करने की बजाय उसको शाम की तरफ जो है स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमारे जो लाभकारी कीट है वो खेत में बच सकें और हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके।
1: तो भगत थोड़ा ध्यान राख पर यार, आपा जो को अगर
0: हाँ, जो
1: करना पड़े,
0: स्प्रे
1: जब
0: है,
1: तक
0: क्योंकि
1: उस अगर
0: देखो
1: स्प्रे नहीं करा
0: सही बात है,
1: दूसरों तरीको अपनाओ, यार स्प्रे करना ही पड़े,
0: हाँ
1: रसायन तो
0: जैसे
1: छिड़काव
0: अब
1: करना ही
0: हमारे वो
1: है,
0: जैसे
1: तो
0: लेडी
1: समय रो ध्यान राख करा।
0: लेडी बर्ड बीटल है, तो वो हमारे जो रस चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं ना, उनको खाती है वो, तो वो जैसे अब ये बम्बल बी हो गया चाहे हमारे ये मधुमक्खियां हो गया, अगर हमारे को उस पे जहर डाल देंगे तो जो परागण की जो क्रिया है जो तो उसके अंदर उसमें वो बहुत ज्यादा कमी आएगी और हमारा उत्पादन बहुत कमजोर होगा। तो हमें ज्यादा अंधाधुंध नहीं करना है, कि सलाह के आधार पे ही हमारे को केमिकलों या रसायनों का प्रयोग करना है, और करने के बाद में ही हमें करना है उन चीजों का प्रयोग
1: तो
0: मिला।
1: क्यों तो मतलब है, मधुमक्खी बीटल और जका भी है केंचुआर, ये
0: सही,
1: सब वहां पर मददगार है किसान भाई यार,
0: बिल्कुल
1: खेतीर मायने
0: मददगार है
1: उत्पादन बढ़ा उनको
0: ये,
1: काम करे।
0: दिन रात हमारे किसान के खेत के जो हैं ये इसलिए जो क्या बोलते हैं जो उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। जैसे केचुआ है, तो केचुआ जमीन को करता रहेगा साथ के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाद वाद डाला, वो पोषक तत्व है उसको बदल के उसको लाभदायी जो उपलब्ध पोषक तत्व उसके अंदर उसको देने की सक्षम रहेगा।
1: हेलो हेलो हेलो, कहाँ कौन फरमा रही हो सा?
2: हेलो,
1: हेलो तो ये मित्र कीटरी तो बातचीत आपने हुई।
0: जी सर,
1: एक पोली हाउस भी आजकल जको है वो नाम है खासा बरसाऊं किसान भाई जका है,
0: सही
1: कई
0: बात
1: काम
0: है,
1: में भी लेवे बनावे भी है, तो यूं अगर खेती करनी चाहे किसान भाई तो कहीं लाभ है, कहीं तरीको आप कर सके।
0: देखो पहला जी बहुत ही बढ़िया बात है, अगर हमारा जैसे इस टाइम में जो परिवेश बदला है, जैसे जलवायु परिवर्तन विचित्र चेहरा सामने आ रहा है, इस बार जो मानसून का जो अपना पैटर्न है बहुत ही कमजोर मानसून रहा, बारिश भी बहुत कम कम रही हमारी, तो उसके
1: हेलो हेलो
0: इस बार जो मानसून बहुत कमजोर रहा, हल्की बारिश रही, तो इस बदलते जो परिवेश में है, जलवायु परिवर्तन के सामने जो चीजें आ रही हैं, लगातार हमारी जो है जो संसाधन है प्रकृति के संसाधन है जल जमीन, उनकी उत्पादकता घटती, उसको देखते हुए आजकल जो पोपोलिया उसका जो चलन बढ़ता जा रहा है, और एक ये इस संरक्षित खेती के रूप के अंदर ये उभरता हुआ चीज है और फायदे की सौदा है। क्योंकि लगातार जैसे पोली हाउस के देखो खेती की बात है, तो पहले जो सरकार थी ना, सरकार बहुत ही कोई चुनिंदे लोग थे वो लगाया करते, लेकिन आजकल नागौर में भी इसकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है पोली हाउस के अंदर, जो इसके अंदर अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो ये भी उसके अंदर जाना है। पहले जो इसके अंदर सब्सिडी थी वो 90 से 95% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी इसके,
1: अच्छा।
0: हाँ काफी सब्सिडी थी, लेकिन आजकल क्या लोगों का चलन बढ़ता जा रहा है कम, मेन तो इसकी बात ये है कि अपन को कम एरिया के अंदर, जैसे पहले 4,000 मीटर स्क्वायर का बनाते हैं, आजकल उसको सरकार ने 2,000 मीटर स्क्वायर तक भी लिया है, इसका जो सब्सिडी है तो वो सब्सिडी भी कम करके 50% सब्सिडी लिया है उसके अंदर, तो उससे क्या है कि लगातार किसानों का
2: मैं
0: जो,
2: मुकेश सर बोल रहा हूँ, चुरू जिले से। सर
1: हाँ बोलो मुकेश जी।
2: हमारे मूंग की फसल उगा रखी है। जी
1: मूंगरी,
2: सर,
1: हाँ कहीं मूंगरी फसल में,
2: तो उसमें मतलब ऐसे पत्तों में छेद हो रखे हैं।
0: अच्छा,
1: छेद छेद हुई है मतलब कोई कीड़ो लागियो है,
2: हेलो।
1: कीड़ो लागियो है कोई, आपने नजर आयो कहीं की?
2: नहीं सर, कीड़ा तो ऐसे नजर नहीं आया है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे जीव हैं जो मतलब मोबाइल की स्क्रीन पर उन्हें झटकाते हैं तो उसमें

0: जाते हैं।
1: अच्छा, तो देखो ये छोटे छोटे इस समय क्या है कि मौसम बदल रहा है, तो उसमें जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, हेलो आवाज आ रही है?
0: हाँ सर,
1: हाँ, तो जो रस चूसक कीड़े भी लग जाते हैं, कई बार देखा होगा माथा बंधने की समस्या, जो फलियां हैं ना वो फलियां बढ़ नहीं पाती हैं या फूल वो वहीं जड़ जाते हैं, तो इस समय क्या होगा आपको जो रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए जो सिस्टमेटिक कोई सा इंसेक्टिसाइड हो, चाहे इमिडाक्लोरपिड हो या चाहे थाइमेथेक्जोम हो, वो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल के स्प्रे कर दें, जो उसके अंदर जो इंसेक्ट लगा वो भी खत्म हो जाएगा और साथ के साथ के अंदर जो नया फाल बना हुआ है वो भी करके फलियों के रूप में बन जाएगा।
0: अच्छा सर। और एक और हमने किया ये बाजरे की, तो उसमें सीसे तो निकाल लिए बाजरे ने, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे बड़े बड़े से ऐसे वो टीकन, जिसे हम स्थानीय भाषा में बेमल बोलते हैं, तो शाम के समय वो लग जाते हैं, पूरी रात भर वो सीतों में बाजरे को खा जाते हैं, सुबह तक देखते हैं तो पके हुए सीतों में भी दाने नहीं है।
1: अच्छा, अब देखो इसके लिए तो क्यों, बाजरे के अंदर क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और अपन घर के काम के लिए लेते हैं, तो ज़्यादा हर्बिसाइड तो रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है कि क्या खेत अकेला है क्या आपका, या पूरे खेतों में लगा हुआ आस पड़ोस के क्षेत्र में?
0: नहीं, आस पड़ोस में है 2-3 खेतों।
1: अच्छा, तो उसके अंदर आपको ये करना है कि जैसे कोई थोड़ा सा एरिया हो उसके अंदर आपको इंसेक्ट का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दोगे ना, तो उसके अंदर फिर वो पूरे खेत के अंदर नहीं लगेगा और सारा रुक जाएगा उसके अंदर, क्योंकि अपन क्या है
0: अच्छा
1: पशु
0: सर, तो
1: पशुओं के काम में
0: इसके
1: लेते
0: अलावा
1: हैं।
0: कोई दर नहीं है कि जो हम अपने किस
1: आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मुकेश आपकी।
2: सो बताओ कहीं क्यों
0: घरेलू स्तर पर हम नहीं कर सकते क्या सर इसका इलाज, जो इससे मतलब ये भाग जाए?
1: अब तो जैसे कोई नीम का तेल हो गया या जैसे कोई हल्दी का भी कई बार का प्रयोग करते हैं, जैसे अलग अलग होता है, तो उसके अंदर कई बार क्या होता है जब उसको इंसेक्ट अगर और जगह उसको खाना मिल जाता है तब तो वो काम में आ जाता है, नहीं तो वो क्या करता है फिर अल्टीमेटली मरता क्या, नहीं करने वाली बात है, वो फिर उसमें वो नुकसान पहुँचाता है। तो उसके अंदर तो आप जैसे नीम के पत्ते होते हैं तो जैसे काढ़ा वाढ़ा बनाते हैं ना अपन, 30-40 लीटर पत्तियों को उसको तोड़ के, 30-40 किलो पत्तियों को तोड़ के 100 लीटर पानी में डाल के उसका काढ़ा सा बना के उसका वो भी स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या अपना नुकसान भी नहीं होगा फसल का और उसके अंदर वो एक उसे फायदा भी हो जाएगा अपना।
2: तो मुकेश मुकेश जी धन्यवाद, आपकी समस्या और समाधान हुई, और किसान भाइयों को निवेदन है कि संक्षेप में आप रो सवाल जो को है वो पूछ ले रहो, ताकि दूसरा भाई जका है वे भी आप रो सवाल पूछ सके। हमें आप चर्चा पोली हाउसरी भी कर, हाँ दूजी भी कर, हाँ उन्होंने पहले लेवा विराम।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: एक किसान भाई जुड़िया, हेलो हेलो,
5: हेलो, नमस्कार सर।
2: नमस्कार, कौन फरमा रही
5: मैं
2: हो?
5: इसरोल बाड़ में चौटन तहसील हूँ, अर्ज करूँ जसवंत बेनीवाल।
2: बताओ जसवंत जी, कहीं सवाल है आप रो?
5: अपने अमरुदरी खेती में ही अपन मिल सके अबार समाधान?
1: अच्छा देखो,
5: अमरुद अमरुद पौधो है जगह में एक लटकी नहीं कहूँ बिने एक कॉफी कलर में जीव है जो को बिने

0: ने कांटे और चार पांच अमरूद काट लिए। अभी मुखे ज्यादा भिगुड़ी एरिंग वजी हुए कहीं दवाई मन बतावन पड़े।
1: अच्छा कितनी साल का हो गया आपका?
0: अमरुद तो कहीं कौन साल को अजी तो दो तीन महीना हो गया सर।
1: अच्छा अच्छा, तो देखो अभी थोड़ा सावधानी के साथ केयर करना है ताकि एक बार जम जाएगा ना पौधा, तो इसके लिए आपको देखो अगर ज्यादा पौधा जम गया और वो उसके अंदर नई फुटान आ रही है ना, तो कोई सा भी आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के जिसकी कम दवा 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल के या गोबर वाले खाद के साथ में डाल के उसको उसमें कर दे ताकि जड़ों के अंदर उसका प्रकोप नहीं होगा और उसकी वो है जो है सही।
0: दवाई एक बार फिर बताइए।
1: जैसे इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरपीड ले लिया आपने ना,
0: ठीक है,
1: तो वो दीमक भी मगर वो तो कोई समस्या नहीं लग रही?
0: दीमक नहीं है सर, एक को मैंने उसको खोल कर देखा सुबह,
1: अच्छा,
0: भीगा हुआ ज्यादा था नहीं, पानी ज्यादा था नहीं, मतलब बार बार भीगा रहता जमीन, इसलिए इसकी वजह से हुआ वो।
1: हाँ तो या तो थायमिथेक्सोम या इमिडाक्लोरपीड है, उसको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको जिसे आपने कोई है जिसे पानी पिलाते हो 10 लीटर की जो बाल्टी है उसमें पानी डाल के उसके अंदर 5-10 ml जैसे 2 लीटर पानी में 5 ml डाल के और उसके अंदर पिला देना, तो उसके अंदर वो जो है सारा खत्म हो जाएगा।
0: जी जी धन्यवाद।
2: अब आप डॉक्टर साहब बातचीत करे है पोली हाउस रे बारे में,
1: देखो तो अपन बात कर
2: सब्सिडी जकी है बा अबे लगभग 50%
1: कम कर दी है साथ की बात से जो अलग अलग प्रोग्राम के तहत पहले बहुत ही मतलब व्यापक।
2: तो लागत कितनी बना आई रही?
1: लागत देखो जैसे 4,000 मीटर स्क्वायर एरिया में लगाते हैं तो शुरुआत के अंदर तो इसका जो खर्चा आता था वो 25-30 लाख रुपए तक आता है। 4 लाख मतलब एक एकड़ जमीन के अंदर लगाते हैं वो 4 लाख।
2: सब्सिडी छोड़ 30 लाख
1: टोटल के
2: टोटल 12-15 लाख घरों लाग गया,
1: लेकिन जो 95% तो किसान को मुश्किल से कोई 8-5-7 लाख रुपए उसके आते थे और वो किसान करके और 2-3 साल के अंदर कर लेता क्योंकि उसके अंदर अच्छी पैदावार होती है। किसान कई बार 4-4 फसल खीरे की या ऐसे फसल ले लेते हैं उसके अंदर और उसका एक बार फसल लेने के अंदर भी 40-50 टन माल उतरता उसके अंदर और अगर जो है तो उसके अंदर बढ़िया उसका मुनाफा होता है। लेकिन इसको देखते हुए अब आजकल जो सब्सिडी है वो 50% ही की है इसकी क्योंकि सरकार काफी लोग हैं जो एडवांस फार्मर है उसको लगा भी रहे हैं और वास्तव में फायदे का सौदा है क्योंकि जो किसान है मार्केट में कम एरिया के अंदर ज्यादा उत्पादन भी मिलता है हमारे को और उसके साथ साथ के अंदर। तो ऐसे देखते हुए क्योंकि पहले जो फॉरम थे वो पहले फॉरम कम आते थे, आजकल जो फॉरम है वो लगातार अप्लाई कर रहे हैं जो राज साथी पोर्टल है उसके ऊपर और किसान भी अपन जागरूक हो रहे एक दूसरे को देख के हो रही है।
2: हेलो कौन फरमा रहा है? किसान भाई फोन कट हो गया। हाँ तो वो एक तरह वहाँ पर कह सका भाई सरकार जकी है बात तो एक निश्चित बजट जो को तय करे। अब बजट में दावेदार ज्यादा हो जाए सब्सिडी पर वो फर्क तो पड़ जाए, ज्यादा खर्चो जितनी लगाना है राज ने इतना रुपया तो लग जाए। हाँ हेलो
3: मैं सर मोहित बोलूं।
2: हाँ बोलो मोहित जी, कहीं सवाल है आप?
3: मारनार को पौधो लगाउडो है भी मनार लागते हैं जड़ जे।
1: अच्छा अच्छा, तो कितना कटाई वटाई कर किया था? कितने साल का हो गया अनार का पौधा आपका?
3: 3-4 साल का है।
1: इस बार कटाई की थी क्या?
3: हाँ
1: कटाई की थी। कटाई
3: जैसे कटाई कैसे?
1: उसकी कटाई करनी
2: छांगी होती है। छांगी हो गई बिना?
1: हाँ तो देखो एक तो हर साल इसकी कटाई करनी होती है। आपके जो भी नजदीकी या जो ग्राम सेवक है जो कृषि का जो कार्य लगता है वहाँ पास में जाके आप उसके बारे में पूरी पूछ सकते हो, तो उसकी हर साल कटाई भी होती है। अगर इस बार जो फल जड़ रहे हैं तो उसके अंदर एक जो पलानो फिक्स के नाम से आता है तो उसका स्प्रे करने से भी उसमें फायदा मिल जाता है, कई बार जड़ते नहीं उसके फूल।
2: तो भाई समस्या रही हो समाधान
1: साथ में जैसे पहला जी मैं अपना बात कर रहे पोलिया उसमें पहले 4,000 मीटर स्क्वायर था तो सरकार ने आजकल क्या है लोग ज्यादा हो गए सब्सिडी का प्रोविजन भी कम कर दिया तो अब इसके अंदर जो एरिया है ना जो पहले 4,000 मीटर स्क्वायर थे वो 2,000 मीटर स्क्वायर के अंदर भी ला रहे हैं तो लगातार उसके अंदर बदलाव होते जा रहे हैं। तो जो भी एडवांस फार्मिंग क्योंकि जो कई किसान तो ऐसे हैं जो 5-5, 4-4 लगातार एक जो सब्सिडी में लगाया था उसके बाद में लगातार वो उसके अंदर जो क्योंकि फायदा मिलता है तो किसान ऑटोमेटिकली अपने अपने स्तर पे भी वो लगाते रहता
2: लगा
1: है और वो पैदावार अच्छी पैदावार।
2: विशेष रूप सब्जियां की खेती है और की भी कर सकते
1: हैं। इसमें ज्यादातर अभी जो चलन चल रहा है वो खीरे का लेते हैं ना, खीरे के लेते हैं और उसके बाद में कई बार क्या होता है कोई शिमला मिर्च का भी लेता है और जैसे पास के अंदर अब जैसे फ्लावर्स आते हैं ना अपने रोज के लगा लिया ग्लेडियोलस लगा लिया तो जो फूलों की खेती का भी है इसका प्रचलन धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। वैसे कोई से भी खेती कर ले लेकिन अपन क्या होता है कि जब उसके अंदर शुरुआत के अंदर जब इसकी ज्यादा कॉस्ट लगती है

0: करने के लिए किसान चाहता है कि ज्यादा उत्पादन मिले और हमारे को उसके अंदर कुछ ना कुछ फायदा हो, अच्छे से हो, ताकि 3-4 साल के अंदर वो अपना फ्री हो जाए और फ्री होने के बाद में अच्छे से हो जाए।
1: एक किसान भाई जुड़िया। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन फरमा रहे हो?
2: साहब मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल गोदारा सतेरन से।
1: बताओ
2: साहब। हमने जैविक मूंग की खेती की है इस बार, तो हमारे एक समस्या आ रही है कातरा करके, एक भूरे कलर का कीड़ा होता है थोड़ा सा, वो एक समस्या है। उसका कोई जैविक उपाय हो तो थोड़ा सा वो एक बार बता दीजिए।
0: साहब वो तो क्या, देखो कातरा तो थोड़ा सा क्या है कि शुरुआत से ही है आपके, 2 महीने से चल रही है करीबन प्रॉब्लम कातरे की ना, तो क्योंकि बड़ी फसल पे तो वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता क्योंकि लगातार उसकी पत्तियां भी खा जाता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले साल भी मैं आपके यहाँ सतेरन के ऊपर गया था तो पिछले साल भी आपके कातरे का भयंकर प्रकोप था यहाँ, क्योंकि जो भी आपका खाली ओरन वाला इलाका ना, वहाँ से निकल निकल के आवाज़ आता है और खेतों को खराब कर लेता है ना। तो देखो इसका व्यवहारिक तरीका तो यही है कि खेत के चारों तरफ क्या है, एक मेड बनाते हुए है ना, ताकि एक नली बना दे, उस नली के अंदर वो सहारा हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी जहर डाल के, क्लोरोपायरीफॉस हो या कोई भी, उसके अंदर जहर डाल के और उसको मार सकते हैं अपन। और तो इसके
2: ये केमिकल नाली के अंदर डालना है?
0: हाँ, ताकि वो क्या उसके अंदर वो हो जाएगा, जैसे वो उसके अंदर नाली में गिरेगा तो उसके क्या वो ऊपर की तरफ वापस आएगा नहीं, अपने खेत में मूवमेंट नहीं करेगा। तो आपका खेत है ना, उस खेत के चारों तरफ के अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर एक नली टाइप का बनाना है, मतलब पूरी
1: खाली खाई खोदता नहीं, खाई खाई पहले यहाँ पर खोदता नहीं, बाढ़ रही
0: जगह
1: तार बंदी करने लग गया, अबे पहले खाई खोदता नहीं यहाँ पर।
0: हाँ, तो वो खाई खोदोगे तो आपका वो जो ओरन से खाली जगह से निकल निकल के वो आपके उस नली में पड़ जाएगा और उसके अंदर आपका केमिकल डाला होगा ना, तो केमिकल से वो सारा मर जाएगा मरने के बाद में ऐसे करके उसका, क्योंकि उसकी कई बार संख्या ज्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। तो यही तरीका है। और हाँ,
1: तो आपकी समस्या का समाधान हुई हो, आगे हल नो पहले लेवा विराम।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: तो संदेश तो हुयो फूक। तो हमें जे बात करा बाजिया साहब, तो जकी फसलां बार किसान भाईयार लियोड़ी है, पम जिया एक दो फोन भी आया किसान भाईयार कीट रोग प्रकोप रा और भी, तो एडो कोई जिया आप बात करा गवार री फसल में भी कोई कीट है कहीं बार?
0: हाँ देखो, आजकल क्या गंवार में जो भयंकर समस्या आ रही है वो, क्योंकि फली के अंदर उसका मुड़ाव हो रहा है और फली भी फूल के वहीं पे खत्म होती जा रही है, और जो फलियों का उस है तो वो जैसे माइट का अटैक हो रहा है ना, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, कोई भी इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे वो फली बन गई जो खराब होगी, जो फूल गई फली वो आगे नहीं बन पाएगी, और जो अपना जो नया होगा तो उसके अंदर नए के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, जो इसलिए हमारे दवाई डालने के

0: स्पेशली देखो पहला जी, इस समय जो जैसे मौसम है लगातार मौसम की मार चलती जा रही है, बारिश हो नहीं रही।
1: बरसात नहीं हो रही।
0: करीबन 23-25 दिन हो गए हमारे यहाँ इलाके इसमें बारिश हुई है। तो इस समय अपन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कई जगह में घूम के आया देख देख रहा था, जैसे कपास है तो कपास जिसने लगा रखी है, अब डोडे बने हुए हैं, तो उसके अंदर क्या, जब तापमान ज्यादा होता है तो डोडे भी जल्दी खुल जाते हैं अपन कई बार। तो उस समय अपन को ध्यान रखना है कि इस समय हमारे को खेत के अंदर नमी बनाना आवश्यक है, ताकि हमारे जो डोडे हैं वो डोडे जल्दी नहीं खुले और हमारा उत्पादन भी बेहतर उत्पादन मिल
1: मतलब
0: सके।
1: सिंचाई करनी जरूरी है।
0: हाँ, हल्की सिंचाई करनी है, जैसे जिस किसान, क्योंकि देखो इस समय ये जो इस अवस्था है ना, इस समय खेती बाड़ी वाली वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि उसके अंदर उत्पादन हो रहा है। तो इस समय जो पौधा है, तो पौधे के अंदर संकट आ रहा है, संकट इस बात का रहा है कि उसके अंदर पानी कमी होती जा रही है। तो हमें किसान भाइयों के लिए मेरा स्पेशल ये भी आपका संदेश रहेगा कि इस समय आपको अनावश्यक किसी प्रकार का कोई माइक्रो न्यूट्रेंट या किसी प्रकार का जो भी उर्वरक या इसका कोई स्प्रे नहीं करना है, ताकि उसके अंदर और पानी की मांग की जो है वो
1: मांग बदे नहीं।
0: मांग बदे नहीं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, कोई भी दवाई का स्प्रे करें तो हमारे को ज्यादा दवाई नहीं डालनी, दवाई की डोज है वो 10-15%, 20-25% तक हमारे को कमी रखनी है, ताकि उसके अंदर पानी की जो अनावश्यक मात्रा है, जो खर्च हो रही है, वो उसके अंदर नहीं खर्च हो। साथ ही साथ ये है, अगर किसी किसान भाइयों की बहुत ज्यादा फसल सूख रही है, फलियां बढ़ना, जैसे मूंग के अंदर
1: मूंग में भी।
0: फलियां स्टार्ट हो गई है, अगर ज्यादा खारा पानी नहीं है, अगर उसके पास पानी देने की व्यवस्था है, तो या उसको इमरजेंसी, जैसे लाइफ सेविंग इरिगेशन बोलते हैं उसको, जीवन रक्षक जो सिंचाई है, उसके तरुण द्वारा भी हमारी फसलों को बचा सकते हैं। तो कम से कम एक अमरना है पानी, हल्का पानी दे के उसके अंदर उस खेत में नमी बना लें, ताकि जो भी हमारी फलियां के दाने बने हैं, वो दानों की जो आकार है वो सही आकार बन जाए और उत्पादन भी हमारा सही बैठ जाए।
1: हो जाए
0: तो
1: उत्पादन हो
0: इन
1: जाए।
0: चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो इस समय जब है, आज का जैसे टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर की पहुंच रहा है, ज्यादा तापमान है, तो पौधा क्या होता है, इस समय के फलियां एकदम से सूखने की कोशिश करती हैं, और जो हमारी जो दाना का आकार बनता है वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और वो हमारे लिए वो जो उत्पादन बैठना चाहिए वो कम बैठता है। तो हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी दवाई का स्प्रे करें तो वो भी कम से कम करें, साथ में किसी प्रकार की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या किसी प्रकार का उर्वरक है उसका भी कम से कम प्रयोग करें, साथ के साथ के अंदर हल्की नमी बनाए रखे हुए हैं, ताकि हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन सही से मिल सके। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमारे को, और ताकि हमारे जो फसल उत्पादन है, क्योंकि देखो इस समय एल नीनो का प्रभाव से जो मानसून का है, जो मानसून इस बार दो ही देखा जाए तो करीबन मुश्किल से कई गाँव में ही हुई है, 2-3 बारिश हुई है मुश्किल से,
1: कम हुई है,
0: और जो
1: बरसात कम हुई
0: खेती
1: है।
0: और स्पेशली जैसे हमारे गाय भैंसों के लिए जो चारा था वो भी इस बार कम रहा है, क्योंकि जो पानी का बहाव था ना, पानी का बहाव हुआ ही नहीं इस बार, क्योंकि नदी नाले तालाब ये सारे खाली पड़े हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रभाव से सारी चीजें, हमारा इकोसिस्टम है पूरा ही प्रभावित तो हो रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे को समुचित संसाधनों का अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली काम में लेना है, ताकि हमारी जो आने वाले टाइम के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं हो, और उसके अंदर हम संसाधनों के सही प्रयोग करके और एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं, और साथ के साथ में बेहतर उत्पादन भी ले सकते हैं।
1: एक गुलाबी सुंडी कपास में भी है कीट।
0: जी, हाँ देखो साहब, अब आजकल क्या है, देखो इस बार तो जो मौसम है ना, देखो कपास में अपने एरिया के अंदर कपास होती है मुश्किल पूरे जो एरिया के अंदर करीबन 30-40 हज़ार, इस बार का जो एरिया वो 35-40 हज़ार हेक्टेयर एरिया है उसके अंदर, तो लगातार जो रस उसे कीड़े थे, लेकिन अब इस बार जो मौसम है वो मौसम साफ होने की वजह से जो है रस चूसक कीड़े वाला, क्योंकि अभी जैसे किसान ना वो एक दो स्प्रे किए हुए हैं, कई बार क्या गुलाबी सुंडी होती है, तो वो गुलाबी सुंडी होती है ना, वो जिसके अंदर वो जो उसकी लट होती है गुलाबी रंग की, वो उसके अंदर जो डोडा बनता है उस डोडे के अंदर होती है।
1: अच्छा।
0: तो हमारे को जैसे पिछले 2-3 सालों के अंदर इसका प्रकोप ज्यादा रहा, इस बार इसका प्रकोप कम देखने को मिला है, किसान का जो है अच्छी फसल है, तो उसके अंदर आज भी अभी अगर उसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप है तो उसके
1: डोडो
0: अंदर
1: सूख गया कभी, मैं पढ़े कौन बने कौनी
0: नहीं
1: फिर।
0: नहीं डोडा तो बनता है, लेकिन उसके अंदर जब उसके अंदर क्या होता है कि जो नर मोत्र और उसके अंदर जो है मोत्र के अंदर वो जो गुलाबी सुंडी बनती है, तो वो उसके अंदर उसको पंचर कर देती है, उस डोडे को पंचर कर देती है, ताकि हमारा तो जो पैसा मिलेगा वो रुई का मिलेगा ना पैसा, अब वो उसको पंचर कर दिया तो वो डोडा फिर वो नहीं खुलेगा, नहीं उसके अंदर वो सारा, उसके अंदर जो पूरे वो कपास बनना था, रुई बननी थी, वो सारी खराब हो
1: तो
0: जाएगी।
1: खराब होगी,
0: हाँ तो
1: खुले
0: अब
1: कौन डोडो,
0: हाँ
1: फूटे
0: खुले नहीं,
1: फूटे
0: तो
1: कौन।
0: उसका जब तक मरना है तो वो आवश्यक होता है, क्योंकि तो इस बार जो प्रकोप वैसे कम है, तो उसको प्रकोप को देखते हुए हमारे वो जैसे किसान है, जिसके किसान है तो वो कई बार डोडा फोड़ के देखेगा तो अंदर उसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहेगा, तो उसके अंदर वो लगातार, क्योंकि एक दो इंसेक्टिसाइड का अगर स्प्रे करते हैं ना, तो जैसे शुरुआत के अंदर तो हल्का इंसेक्टिसाइड करते हैं, और बाद के अंदर जैसे भारी इंसेक्टिसाइड जैसे हो गया साइपरमेथ्रिन हो गया लेमडा हो गया ना, इस प्रकार के जो है या इमामेल

0: का इनका स्प्रे करके हम हमारे उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: वाह साहब, आज साहब आप चौपाड़ में पधार्या और किसान भाइयारी समस्याओं और जो को समाधान करियो और उपयोगी बातें बताई वास्ते आपरो घणो घणो धन्यवाद। किसान भैया बाजार भाव जका है वे आयडा है तो आप तक पुख्ता कर दे रहा हूँ। नागौर मंडी में आज मूंगा भाव रिया कम कम 7,000 और बत्तों बत्ता 8,500 रुपया कुंटल तई। सफ़ेद तिल जका है बे बिकिया कम कम 10,000 और बत्तों बत्ता 11,600 रुपया कुंटल तई। काला तिलारा भाव रिया 9,30,000 रुपया कुंटल ले पर आर 11,200 रुपया कुंटल तई। ज्वार बिकी नागौर मंडी में आज कम कम 3,500 रुपया कुंटल और बत्तों बत्ती 4,600 रुपया कुंटल। गवार भाव रिया 5,600 ले पर आर 5,850 रुपया कुंटल। तारा मीरो बिकियो कमो कम 5,800 रुपया कुंटल और बत्ते बत्तो 6,150 रुपया कुंटल। सरसुरा जका राइडेरा औसत भाव जका है 40% फेटरा बे 7,850 रुपया कुंटल रिया। जीरो बिकियो 16,500 ले 20,400 रुपया कुंटल। दाणा मेथिरा भाव रिया 6,000 ले पर 6,450 रुपया कुंटल। इस सब गोल बिकियो 9,000 ले पर 12,500 रुपया कुंटल। सौंप बिकी 7,000 ले 11,500। चनो बिकियो 5,400-5,700। असाड़ियर भाव रिया 5,600 ले पर 6,025 रुपया कुंटल। और सिंधी सुअर भाव रिया नागौर मंडी में आज 6,000 रुपया ले पर 7,800 रुपया कुंटल ताई। इन रसा गई जो है खेतीबाड़ी चौपाल रो कुंतड़ो भगत अबे पूरो हो रियो है तो बता दे रहा हूँ भैया ने कि आज रो जो फोन इन कार्यक्रम हो इनमें तकनीकी सहयोग रियो जितेंद्र कुमार रो और प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल। इन रसा गई कुंतड़ो भगत कार्यक्रम रो अटेज हुयो पूरो दिराव आप प्रहलाद भाई ने सीख करा। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला

0: ये भी जानिए, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सके, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे, और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
0: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में, जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
0: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
0: जी,
1: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें, और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
0: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी, कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
0: जी।
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं
0: जी।
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे

0: पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी।
0: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंदले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और

0: ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट

0: को दर्शाता है जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।

0: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
2: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
3: जी जी।
2: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा, सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
4: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
5: हाँ, उपाय बताइए।
2: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
6: ग्राम सभा?
4: ठीक है।
6: ठीक है।
2: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
5: हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
2: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
7: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
8: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
2: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे, और रामू तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो, और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
9: वो कैसे?
5: क्या गड्ढा बनाना है?
10: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
4: फिर इसकी क्या जरूरत है?
9: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
2: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
4: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
10: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
2: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
4: सिंचाई टैंक?
2: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
5: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
11: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया, और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी, जल स्तर में भी सुधार हुआ, और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी, कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें, और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: Ever Gorbin Pogam Shunya Singh Boyane Boyane Dobriane Jodane Modane Udane Berdane Jimdane Hadi Gardani Shibani Africa Giriyoru Hoge
1: Hey Loon Kiriyoru Ganan Gana
2: Rom Rom Sha
0: Hey Bayo
1: Hi Go Kaka
0: Hey Raju Punyu Agi
1: Hau Kaka Huare Koni Piru Dorti Ave Raki Jabar Deko Salle Abar To Baya Avana Jano Karn Lagi
0: Hey Aru Jano Karn Lagi Jine Thin Dhan Kapda Hila Liya Kaiyo
1: काका कपड़ा हीर ना देउड़ा राखी अल दिन ताई दे दई
0: अरे वाशिया ए भाई
1: काई को काका
0: ओ जागी को तुम्हारे नी
1: भाई बहन को त्यौहार काका
0: हां भाई बहन को त्यौहार है भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है
1: सही काका
0: ए राखी के दिन देखो भाई ए जी के आपरे हार हूं चला रावे के मारे भीरे राखी ले जाऊं
1: हां काका
0: ए भाई ए जी को भीरो आपरो जी को भाई बहन ने वचन देता है कि मैं तुमको जब तक जीऊंगा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा रक्षा करूंगा
1: हां वचन देवेर काका भाई को बेन ने बेस करावे गिफ्ट देवे
0: आ देवे मारी बेटा देखो बेटा के ए जी का त्यौहार भिणुड़ी ने मारी बेटा
1: हां काका
0: ए आपसी प्रेम का है परिवार का है जी इसमें कहीं परिवार का प्रेम भिणा रहता है
1: हां सही काका चोका चोका जिमण आते आज जवे रहते हैं उजवे इन बिना आनो जानो जे
0: हां धनी धादे यार जिमण जी जे भाई मैं केउता है तुमको तू समझता नहीं है
1: हां काका हम
0: हम ये केउता है कि ओ त्यौहार है जी का कितना उपयोगी त्यौहार है
1: हां
0: बेन कीती भी भाई की दियोड़ियो पण बाप ई दीवार में ते भाई के आए
1: तो ये काका जन आपने समाज में परिवार में प्रेम सद्भावना स्नेह बणुड़ो रेवे
0: हां बेटा ये प्रेम कई ये दीवार और ये दीवार में तो कू भाई आदि गालू जालता है जी का जालता रे प्रेम भाई ने बेनर बणुड़ रेवे
1: हां काका
0: हां काका कोनी बो फोन करे बिन बिन लाब जे
1: काका लाऊ पहले मन राखी पुन्यो पर कपड़ा कराओ ला
0: ए धारी कपड़े धारी काकी कराई मैं के जी धारी काकी ने तो बोल ला
1: ओ लो
0: हेलो
3: हेलो काका
0: ए रोम रोम शाही रोम रोम शाही आबरो न्याव भिजो कोके नीर गांव भिजो
3: गांव जोगलसर है रामेश्वर नाम है
0: ओ हो रामेश्वर भाई जोगलसर में काई करयो
3: भैंसा चरावा
0: आओ भैंसा चराव ते और लीलो छोको उड़ो मार दो
3: हां लीलो घणी है
0: ए भैंसा कीती हो
3: दो भैंसा है एक गाय है
0: अरे वाह शाबाश

0: बच्चों का मैं फिर बार में सब क्या नहीं हो
1: सब मौज है। एक आदमी घिसोल दो खा जी वो तो सही।
0: अब आर पूछो मदीना दे हुल्ला जी को भाई और कहीं करे अब राम जी
1: भेजा काम है वो तो।
0: हो भेजा काम है, टेंशन मत करो, ध्यान रख जियो। ए थाने प्रोग्राम कैसे योग लागे हो?
1: प्रोग्राम तो थारे आलू में सब्जी हुए और मैं नमक लागे कितो स्वाद हुए।
0: आओ हो बजे कहीं गे उड़ा।
1: तो प्यारो लागे पर फोन कौन लागे?
0: आज बीनरी धाने हाकत जो कौन करे?
1: बीनरी लाड करे।
0: आज ओ हो कहीं कहीं बीना में धारे हो?
1: मारे तो कल देखो ते लाता हूँ लाभ सीर मुझे होंगी। कुर्ती उठूंगा और घूंगड़ी करे तारे सरकार।
0: अरे वाजिया वाजिया ठीक है, घर की लक्ष्मी सेवा जो की करे धाड़ी तो
1: शादी करे जोरदार।
0: ए लुणिया काका काई को आए काई जा भाई सेवा जो की करे तू बात करे तू कर ले नहीं तो मैं ही और करूँ।
2: काका काई बात करो मारे तो आंसर डब्बे कौन है।
1: अरे मुंडा डो आप दे लुणी भाई।
2: भाई जी हादसा थे तो काके ने हादसा मिल लिया तयदार।
1: भाई मैं तो रोज ना इसका फोन बोलना।
2: हाँ और टाबर टोली कहीं करे धाके?
1: टाबर स्कूल जाए पड़े।
2: केवड़ो माने तो?
1: हाँ केवड़ो तो माने।
2: वो अजन न्या लूजे होते तो चौका टाबर ने पढ़ाई जो।
1: हाँ टाबर पड़े।
2: यार बड़ी तो वही आका करती रही वह तो।
1: हाँ सही
2: है सर। और प्रोग्राम केड़ो लगे?
1: प्रोग्राम घनो जोरदार लगे।
2: ते पानी में रेवन वाला चार जीवा का नाम बताओ।
1: बस तो मछली डेडरा रहे
2: ए दो ही हुआ नहीं तो?
1: तो दो या तो मैं अगला घर खाना दे गया भाई हम तो क्षेत्र में ना।
2: काका दो थे बताई दो बच्चे।
0: ए मैं तो भाई के नहीं जाऊँ कौन बच्चे तो ही बच्चा।
1: काश वो हुए बच्चे।
2: हाँ काश वो हुए मगरमच्छ हुए। आज कहीं होना ला
1: भजन
2: काका भाई जी के भजन होनो।
0: ए तो मैं अगर बेटी खाऊ जाऊँ तो मारी भेजा।
2: ओए लो

0: ਲੱਗਣ ਲੱਗੂ।
1: ਏ ਜਿਉਂਦਾ ਰੋ ਰੋਮ ਜੀ ਥੋੜੀ ਲਾਂਬੀ ਉਮਰ ਖਰੇ ਆਪਰੋ ਨਾਉ ਬੀਜੋ ਕੋਕੇ ਨੀਰ ਗਾਉ ਬੀਜੋ।
0: रामदेव जंदू बोल रहा हूँ कबूतरी नाडी से।
1: हो रामदेव भाई कबूतरी नाडी के पास कहीं करता हो
0: जी। कौन करा काका पढ़ा ही करा।
1: ए जीजी पढ़े मारा बीजा दसवीं के माई पढ़ो भाई छोका पढ़ो छोका लिखो माई डांकार फ्रीवार का नाम ऊंचा करो बेचारे। ए भाई रे ए गांव में फ्रीवार में हकल क्या अंधी रे
0: बढ़िया
1: है काका। ए के शोक लागे रे
0: काका गुड़ नाई मीठो लागे।
1: आई एक हूने हगला नी हुनावे
0: हगला नी सुनावा।
1: आई वाह मेरी बेटा ए लूनी भाई यो
2: थैंको काका।
1: ए भाई कहता है हम पढ़ता है दसवीं के मैं तुमसे बात करना चाहूँता है बोलो। हेलो
2: हेलो
0: लोनी भाई राम राम।
2: राम राम सर। राम राम सर भाई जी ताजा पढ़ी जी अब काला बोर्ड रो पेपर आवेला।
0: हाँ लोनी भाई
2: कितना घंटा पढ़ो।
0: दिन में तीन चार घंटा पढ़ा।
2: फोन अलगो मेल पढ़ो तो कखन राखो फोन ने।
0: नहीं मोटूड़ो फोन रखा ही कौन है।
2: अरे बढ़िया सा बढ़िया थे एक ही हाचा एड़ा मिला जका मोटूड़ो फोन नहीं रखे। बताओ पानी रा और कहीं कहीं ना हुए बताओ।
0: जल
2: हाँ
0: पानी
2: अच्छा
0: H2O
2: हाँ
0: नीर।
2: अरे वाह वाह जल नीर तो पे वारी। आज कहीं होना ला
0: राखी रो गीत सुना दो
2: काका। आयो
1: आ
2: बीरे ने राखी रो गीत सुनाई दो।
1: ए पूनम आऊ नाल तू जाऊ दो बार बेटा।
2: ओए ला

0: ਬਸ ਸੰਸਾ ਹੀ ਹੈ।
1: काकर बशी जी एक ही है तो काको एक सवाल करे उसका जवाब भी
0: देखो साहब अभी सवाल तो कोई आ ही नहीं।
1: एक अंधेरो है कमरे रे मायने एकदम अंधेरो है भी में एक जिमनी है मोमबत्ती है पेटी है माचिस है हगड़ो पहले देखी जगाओ बताओ
0: पहले माचिस ने जगाओ जगी वे कौन सगी
1: ये भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: धनी भाई राम राम
2: राम राम सर राम राम सर भाई जी की भजन भाव करो के माला मिनियो फेरो के
0: भाई भगवान ना 24 घंटे ला
2: अरे बस 24 घंटा लो जन तो ते तो न्याल उजो
0: अब न्याल क्या अब के अभी और काम के आपने काम हाथ की वे को ने बैठा भजन ही करा
2: अरे काम हुआ के वे काम ने वे तो लोग ते देखे कोनी थारा है ना पिंपल गट्टा मा तो बैठा बैठा गप्पा ठोके टाइम खराब करे बर्बाद करे
0: गट्टो तो ठोकी कोनी मारकन तो गट्टो थारो रेडियो है ओ होना खत्म
2: अरे वासा वो है जो नाचो है वो तो आकाशवाणी शुद्ध वाणी आवे कोई की चुगलिया कोवे नी
0: हां थारी थारी होना अगली नागौर
2: अरे नागौर की के हुणो अब थे बोलिया जन थारी बीकानेर की हुणी जी ना
0: हां जे ने बीकानेर ते लिए तो थार नागौर ने आकाशवाणी ने
2: अरे वास आवाज ना आज कई हुणो ला
0: आज को रक्षा बंधन आवे नेडी कोई हुणो आए तो सो को रक्षा बंधन करो
3: राम राम काका जी
1: ए राम राम शाही आपरो न्याव भिजो खोके नीर गांव भिजो
3: काका जी करे जुड़ा सुजान करते से लो बोलो उमाना राम
1: आओ हो उमाना राम जी कई काम जंजा हुए हो
3: कई काम न होवे काका जी खेती कोई काम है बैठे हां बस आज मौज मस्ती कर रहे हां
1: अरे वो सेवा खेतियां कैसी की हो
3: खेती ठीक है काका जी बरसात की जरूरत है सख्त जरूरत है बरसात की बरसात को वेट कर रहे हैं
1: आप देखो हम उतरे रामे देखो बाजुओ लागे करियो राम जी मां ने चौड़ा घूटे घबरो बजी ना
3: हाँ ये बात है घबरा तो वही कहीं करे लो राम जी
1: हाँ करी राम जी घरे ना ले और भी जो गाँव मीर परिवार में सब क्या नहीं हो
3: सब ठीक है काका जी सब बढ़िया है
1: ए मोर भोगाम धोने के शोक लागे हो
3: भोगाम बढ़िया लागे हर बार कॉल मिलावा
1: ए लूनी भाई यो
2: कैको काका
1: ए भाई बात करना चाहता हूँ जानगढ़ से बोलो हेलो
2: हेलो
3: हाँ राम राम लुणी भाई
2: राम राम सर राम राम सर भाई जी टाबरिया कितना है तांके
3: टाबरिया घड़ा ही है वो राम जी का
2: कितना राम जी की बाया कितनी है
3: बाया चार है राम जी की
2: ए थारो केवड़ो करे
3: केवड़ो तो करे बाया छोटी स्कूल जावे सातवीं पढ़े रे सातवीं पढ़े रे दूसरी पढ़े रे एलकेजी में ही आया
2: अरे वाह सावा बाया ने चौकी पढ़ाई जियो
3: कोशिश तो करा दिखाने पढ़ाने की करा कोशिश तो
2: अरे वाह एक आटी बता
3: बता दियो बता दियो
2: एक भंडार का एड़ा खजाना जो बांटने से बढ़ता है नीतर घट जाता है कहीं होता है
3: वो शिक्षा ही है शिक्षा ही लुणु भाई शिक्षा ही है
2: इन्हें दुए में हुनाई दो देखा
3: अब दुए में तो क्या सुनाई दा यार
2: काका थे हुनाई दो तो
1: हेलुमके
2: हाँ काका
1: ए तुम हुनाओ हमको पड़ी ना कम आउंदा है जो
2: आ थाने याद कमरे में काका
1: आ मने याद कमरे बेटा
2: काका सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात
1: है
2: जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चा घट जात
1: अरे वाह मारी बेटा
3: सही है ओई है ओई
2: सही है जन बताओ आज कई हुनोला पापा बेटी
3: आज का बंधन आ रही है रक्षा बंधन को सुना दियो
2: काका आयो
1: भैया
2: भाई जी के राखी पुन्यू आवे देखो राखी हुनाओ
1: ओइया मारी बेटा

0: राम राम सा काका जी।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, ओब्रोन्याओ भिजो को किनीर गांव भिजो।
0: गांव जलवाड़ा मेरता तहसील में बोलू सा अनदा राम।
1: आओ हो अनदो जी, जलवाड़ा में कोई करो।
0: अरे खेती बाड़ी का धंधा करा सा।
1: ए खेती बाड़ियां केड़ी गयो जलवाड़ा का जियो।
0: खेता बाड़ी तो बड़ी है पर बरसात कोनी काको जी, बरसात माड़ी है।
1: ए राम जी करी, राम जी मां ने जोरा को देखो हमरो उतरे रहुआरे ला पर लाल जी धांगे भाडवो।
0: हां सा।
1: ए चिंता मत करो, और काको एक सवाल गड्डा, उसका सवाल तो आपको करना ही पड़ता है।
0: हां बताओ सा, आज जरा बताओ।
1: ए तो बताओ सा, ऐसी कोई सी चीज है जिसकी जवानी में हरी हुए बुढ़ापे में लाल हो जाए?
0: आ तो काई मेरे चले सा।
1: अरे वाह। ए लुनगा
2: काई को काका।
1: ए भाई हमको डांटते नहीं, हम काई करता बताओ।
2: भाई जी काका तारो प्रोग्राम उन्होंने होशियार का।
1: आज ओ हो तो तुम। ए तुम एक काम करो, भाई को है ना आप कोई सवाल करके हराओ, जब मानूंगा तुम्हारे को।
2: हेलो।
0: हेलो राम राम सा।
2: राम राम सा, राम राम सा भाई जी। यो
0: हां सा।
2: ताके लोणा आज थे तुम काके ने।
0: आ काका आपो बुजुर्ग आदमी है, आपो थाके काई सा।
2: हां थाके तो कोनी बन कणे कणे थोड़ा मोड़ा पड़ जे।
0: हां सा।
2: ताके बेटा मीराबाई की नगरी है मेड़ता।
0: हां सा मेड़ता मीराबाई की नगरी है सा।
2: देना मीराबाई का एक दो एक पद उणाई दो।
0: करो काई आवी कोनी
2: काका। मैं उणाई तू काई थांदो तो ना नहीं भाईजी ना थाने।
1: आई उणाई जानी नाजी मारी बेटा।

0: देखो
1: आप सावन को महीनो है, शंकर भगवान को होना जो
2: पका लागू
0: ए जीवदारो रोम जी थोड़ी लंबी उम्र घरी।

0: cooking it gone with you?
1: Coach level on Sevri.
0: Oh, coach, yes, Sevri me going to the Maribeta.
1: He ain't got a bit.
0: Oh, get him with the Maribeti.
1: Barwin.
0: ओ जोका पड़ो जोका अली को माई डांकार फिर मार के नाम ऊंचा करो मारी बेचाए
1: हाँ काका धारा सी बात है
0: ए रोम जी को एक आके रोशी धने न झगड़ा रे भरा हुए टेंशन मत के दो धर मम्मी पापा कहीं करे मारी बेटा
1: पापा एक पड़ा वे मम्मी घर लो काम करे
0: ओ हो जोकी बात के मार जा सरकारी एक फ्री वे जी
1: फ्री वे ते मार
0: अरे वाह शे वाह ए भाई
1: हाँ काका
0: ए दिनी प्रोग्राम के योग लागे
1: बहुत सोना बहुत मीठा लागे
0: अरे वाह शे वाह ए धर लाड गुण रागे मम्मी रागे एक पापा
1: अरे धर नहीं गुण ही रागे
0: आज धर पापा कहीं लाओ धर वादे
2: धान कितो मोटो उड़ो है
1: पांच बीघनी है खेत है खासी ऊंची है मुंह गणी हाथ रहे घिसोल्डे कंडी आवे मार तो
2: अरे तो भगले आवे कई कराओ ताई जी एक सवाल बताओ
1: आई जन बतावा
2: अरे आई थाने तो दौड़ तो आई आई कई कोनी बताओ दूध कई कई चीज बने
1: दूध रसमलाई बने दूध दही बने दही घी बने और दूध दिया आंबा और दूध गणी मिठाई बने
2: छाछ बन जाए पनीर बन जाए राबड़ी बन जाए आज कई होना ला
1: आज कोई जो कुमार दिल जीरो बदन
2: काका आया हो
0: हाँ बेटा
2: भाई के माता जी को आन दो
0: मैं अगर बेटी खाऊ जो तुम्हारी बेटा
2: ओए लो

0: काकाजी राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आबरो न्याओ भिजो कोकिनेर गांव भिजो।
0: गांव जोगलसर है काका।
1: आओ हो जोगलसर से कौन बोलते हो?
0: ओम सिंह।
1: ओम सिंह जी, ओ हो काई करो?
0: काई करा काका, आई तो खेती बाड़ी रे करा, पर चज पर जाता रहा।
1: आओ हो, ए खेती बाड़िया कैसी के ओम जी?
0: खेती बाड़िया ठीक है, बसंत कौन?
1: ए गरी राम जी, गरी राम जी, माके ने जोरा को और बजो गांव में परिवार में सब क्या नियो?
0: सब राजी, खुशी है, टमाटर दियो।
1: ए जाने प्रोग्राम के योग लागे हो?
0: प्रोग्राम तो काका जरूर घणो लागे।
1: ए जरूर लागे जी, ने काको एक सवाल करे उसका जवाब बिनो के काई?
0: हां,
1: आ एक लुगई।
0: अच्छा,
1: एक आदमी हो?
0: हां,
1: आदमी भी लुगई ने पूछियो थारे घराला नो नाम काई है?
0: अच्छा,
1: आ जो बा लुगई हांको खागी बोली कोन इनके बता भाई बता जी को रेलगाड़ी चले और जी को रेलगाड़ी रुके वो हुए।
2: रेलगाड़ी चले बंद हुए जो तो मन था है
1: जो बुझा कहीं हुए
2: काका? हरी झंडी रेलगाड़ी चले लाल झंडी बंद हुए जन थे बनाई दो कहीं ना हुए लो
1: हरी लाल भाई ये बात करो।
2: हेलो,
0: राम राम लोन भाई।
2: राम राम सर, राम राम सर भाई जी। यो
0: कहीं करो लोन भाई?
2: ए कहीं करा काके ना तय करो ना ले रावड़ी हूँ देखो ते काको मांगे जरा फोन उठाई उठाई देऊ।
0: हाँ जोरदार काम कहीं यह करो।
2: अरे कहीं करा तो बड़े रा की सेवा करनी पड़े, नहीं करा तो बचे तो आड़ो जाल ले रूस जेवे।
0: हाँ,
2: प्रोग्राम केड़ो लागे?
0: प्रोग्राम जोरावर लागे।
2: अरे जोरावर लागे कहीं एक दुओ किए करे नहीं हो? कागा किसका धन अरे कोयल किसको देत ए मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर लेत अब काको धन कहीं देवे बताओ?
0: मैंने काको की फोन दे बने सोसकोर थी मैं सुना भाई काको कभी बैठ रहा दीपक के फोन करा
2: सही है सर मीठी लागे भाषा अपनी
0: ठंडी गनी लागे मीठी।
2: हां आज कहीं हुनाला मीठो सो गीत
0: तो भजन में सुना दिया
2: काका आयो।
1: हां बीजा
2: भाई जी के भजन सुनाई दो।
1: आई मैं गिर भी दिखाऊं जो मारी बीजी।
2: ओए लो

0: है मारे भैया ओ तो भयंगी बोयंगी सबकी पिसिन का पोगाम।
1: हेलो गोरबन,
0: ई पोगाम में कोई बाइक की दे बजने होना चाहूंता है तुम कहीं गेता हो
1: काका। इतवार के दिन 12 बजे लेपरा
0: आहे,
1: 1 बजे तई नागौर आकाशवाणी फोन करना है।
0: आज फोन करना नी मेरे बेटो मारे भैया
1: मिंडी एको पांचो आठो दुओ
0: आहो
1: दुओ चको मिंडी एको चको आठो।
0: आज बेटा ए बाई
1: आइको काका,
0: ए की भैया का फोन है सुमे की गोमी में हमले नी सिया तो वो तुम्हारे काका को हाका करेंगे पाना बांचो।
1: काका कैलाश राम मुंडवाऊ है सुरण बिचू सिणियाळाऊ है लालचंद कुंभाराम जाखड़ बेरासर है मनी राम चन्ना राम डूंगराम गोदरा खिचिया सरू
0: है ने केवणो आगले दी द्वार का फोन गड़गड़ी जो।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारे और लोणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाइयो
1: काई को काका,
0: अब बारे आज के पोगा में तकनीकी हयो कसका है।
1: ए है जितेंद्र कुमार राजा राम गेदर।
0: आओ आज के पोगाम के पशदूत की तो
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगाओ मारे भैया,
1: ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरबन
0: होते ही रहो, तब आप रे को के नीर हो गे
1: ए लूण की ने दिराओ सीख और करते हैं
0: रोम रोम शाय।

सक्षम हेलो गोरबंध, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-98-51-31-6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 977-97-09-10-7500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले

0: इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
1: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

0: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति कल रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में

0: 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे नागौर में आयोजित जश्न ईद ए मिलादुन्नबी की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर अहमद अली का है और इसे प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल।

हिजरी संवत का रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत यानी जन्मदिन मनाया जाता है। आप इसी रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख को सोमवार के दिन मक्का में पैदा हुए। आपकी परवरिश आपके दादा और आपके चाचा ने की। आप हमेशा सच्चे ईश्वर के बारे में सोच विचार किया करते थे। 40 साल की उम्र में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे इल्हाम कहते हैं। आप इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हैं। आपके जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। रबीउल अव्वल माह के शुरू होते ही जगह जगह दुरूद व सलाम की महफिलें आयोजित की जाती हैं। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस साल भी आज 26 अगस्त 2026 को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े ही अकीदत और धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह ही नमाज के बाद मस्जिदों में दुरूद व सलाम पेश किए गए।

उसके पश्चात फातिहा खानी और लंगर तकसीम किए गए। सुबह 8 बजे नागौर शहर के गांधी चौक में जुलूस से मोहम्मदी का प्रारंभ हुआ। इस जुलूस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया।

जगह जगह पर जुलूस का स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा की और बच्चों को मिठाइयाँ तकसीम की गई। शहर के मुख्य मार्गों सदर बाजार, काजियों का चौक, लोहारपुरा होते हुए ये जुलूस दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी पर आकर संपन्न हुआ। दरगाह के बुलंद दरवाजे के पास शानदार समारोह का आयोजन हुआ, जहां स्कूली बच्चों ने नात और तकरीर के प्रोग्राम पेश किए।

Ah,

शैतान आकर के पसली पर लात मारता है, उसके सबब से ये बीमारी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मुझसे दूर रखा हुआ है, वो जाकर भी मेरे करीब नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मुझसे उसे दूर किया। अब हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी उस खैबर के अंदर जो मैंने और मेरे बेटे ने जहर वाला खाना खाया था, वो जो जहर था आज उसने अपना जहर फिर से उगला है। हालांकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई भी चीज तनावुल फरमाते या खाते पीते तो जनाब वो चीजें खुद आका की बारगाह में अर्ज करती थी, या रसूल अल्लाह इस खाने के अंदर फला शख्स ने फला चीज मिलाई हुई है। ये हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा दिया था। अब तमाम बीवियां जो हैं वो इकट्ठा होती है और हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम को एक कांसे के बर्तन के अंदर बिठाती है। सात कुओं का पानी, यानी अलग अलग कुओं का पानी लाया जाता है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वो पानी डाला जाता है, जिससे हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम को थोड़ी यानी यूं समझिए शिफा मिलती है। अब आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के यानी तमाम जो शोहदा थे, शोहदाए ओहद, शोहदाए बदर, तमाम के लिए दुआए मगफिरत फरमाते हैं। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 गुलामों को आजाद फरमाते हैं बीमारी की हालत के अंदर। 40 गुलाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो आजाद फरमाते हैं। एक रोज हजरत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अगर इस कायनात में हुजूर ने किसी से मोहब्बत की है तो हजरत फातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारका। मोहब्बत का ये आलम था कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरते तो आप सबको मालूम है कि तमाम चरिंद परिंद पत्थर शजर जितनी चीजें थी हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम पर दरूद व सलाम भेजा करते थे। तमाम सहाबा जब हुजूर को देखते हुजूर आ रहे हैं कि हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम तशरीफ ला रहे हैं तो तमाम सहाबा हुजूर को देख करके खड़े हो जाया करते थे। मगर जब हजरत फातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लेकर के आती तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाया करते थे और फिर हजरत फातिमा से फरमाते थे, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है,

0: जुलूस मोहम्मदी में शामिल एक व्यक्ति से हमने बात की तो उन्होंने कहा,
1: इस जुलूस मोहम्मदी में कई लोग हमें मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: आनंद बहुत अच्छा लगा, कई सालों से बचपन से जो है हम जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून मिलता है, दिली रूहानी दोनों सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और अमन का पैगाम मिलता है, और एक भीड़ इकट्ठा होती है तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि सब एकता के प्रतीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
0: इस तरह ईद मिलादुन्नबी का पर्व नागौर शहर में बड़ी अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस रेडियो रिपोर्ट में हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, वाचक स्वर अहमद अली का, और इस रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल।

अभी आप सुन रहे थे नागौर में आयोजित जश्न ईद ए मिलादुन नबी की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर था अहमद अली का। इसे प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड से पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था।

या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी। तो काफी पिक्चरें देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसे देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्म में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थी, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर में बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी, तो इसलिए हमने

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा बरस से और इस तरह से उसको।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: नेटवर्किंग करते हैं तो मुझे लगा कि

0: इस पे फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में, कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जिसे डिपिक्ट करते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है
1: जी।
0: कोई फ्लैट नंबर है क्या है ये
1: जी।
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की है मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉरपोरेट बनाई 2006 में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हीरो।

0: भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है। यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।